एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हिंदी में समाचार हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम में लीजिए, पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

देश वंदना अभी आपने सुनी समूह स्वर में। आइए अब सुनते हैं राम भजन, जिसे गाया है शर्मा बंधु ने।

शर्मा बंधु की आवाज में अभी आप सुन रहे थे राम भजन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। गायक कलाकार हैं हरिओम शरण।

आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कबीर का ये भजन।

0: अनूप जलोटा और साथियों की आवाज़ों में गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। आज का विषय है दलहनी फसल के बुआई। इस विषय पर आपको जानकारी दे रही हैं चित्रलेखा तिवारी।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। खेती के बात कार्यक्रम में आज हमन आप मन पर दलहनी फसल राहेर उरीद और मूंग के बुआई संबंधी जरूरी जानकारी लेके आए हवन। संगी हुआ, जैसे कि आप जाना था दलहनी फसल मन सिर्फ किसान ला अच्छा आमदनी नहीं देवे बल्कि जमीन के उर्वरा शक्ति ला बढ़ाए में घलो मदद करते। ये फसल मन हवा ले नाइट्रोजन लेके माटी ला उपजाऊ बनाते। तो चलाओ जाना थन कि राहेर उरीद और मूंग के सफल खेती पर का बात के ध्यान रखना जरूरी है। तो संगी हुआ, बरसात के शुरुआती दलहनी फसल के बुआई पर सबले बढ़िया समय माने जाते। राहेर एक लंबा अवधि के फसल आए, एकर बुआई जून के आखिरी हफ्ता या जुलाई के मध्य तक करना बहुत बढ़िया रहते। राहेर पर पानी निकासी वाला दोमट या मटासी जमीन उपयुक्त माने जाते। अब बुआई करत बखत कतार ले कतार के दूरी करीब 60 से 90 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा के दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखे के सलाह हम देबो। अब प्रमाणित बीज के उपयोग करो। बुआई के पहले बीज उपचार जरूर करो। एखले रोग और कीड़ा के प्रकोप कम होते और अंकुरन बढ़िया पड़ते। उरीद के बुआई पर उरीद एक कम अवधि के दलहनी फसल आए, एखर बुआई जून ले जुलाई महीना के तक आसानी ले करे जा सका थे। माने जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के मध्य तक आप आसानी से कर बुआई कर सका था। और उरीद पर 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहते। और कतार ले कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर तक के रखे जाते। और बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी रहे, चेत करना है ये बात के कि खेत में पर्याप्त नमी रहे तभी उरीद के बुआई आप कराओ। अब पानी के जमाव उरीद पर नुकसानदायक रहते भाई। एकर जौन खेत में आप उरीद बुआ था वो ढलान वाला होना चाहिए या खेत से पानी के निकासी की व्यवस्था जरूर रखो, नहीं तो फिर आपला उरीद के फसल में नुकसान हो जाही। अब मूंग के बुआई के बात करबो तो मूंग हरो हर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल आए, खरीफ मौसम में जून जुलाई के महीना बुआई पर उपयुक्त रही थे। अब मूंग पर 15 से 20 किलो प्रति है ना हेक्टेयर एक बीज लगाए जाते और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है। मूंग के बीज ला राइजोबियम कल्चर और फफूंद नाशक दवाई ले उपचार करके बुआई करे ले उत्पादन बढ़े के संभावना रहते। संगी हुआ, ये तो हो गए आप मल्ला कैसे कैसे बुआई करना है ओकर बात। असामान्य सलाह के बात करबो दलहनी फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी रहते। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निंदाई गुड़ाई जरूर कराओ, खेत में पानी के निकासी के उचित व्यवस्था रखाओ और समय समय में फसल के निरीक्षण करत रहो ताकि कीड़ा में रोग के शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण करे जा सकत है। अब प्रमाणित बीज संतुलित खातु और वैज्ञानिक तरीका अपना के किसान भाई मन दलहनी फसल ले बढ़िया उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ता संगवारी हुआ, देखा आज खेती के बाद के कार्यक्रम हमन बताएं कि राहेर उरीद और मूंग के बुआई कैसे करना है, कौन मौसम में करना है, कैसा ना माटी में करना है और एक बढ़िया फसल लेना है आप मतलब हम जरूरी जानकारी एक बार आऊ दे दी। जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के मध्य तक तीनों फसल

0: राहेर होए के उरीद होए के मूंग होए, आप बुआई कर सकत हो। बुआई करे के समय सबसे पहले तो आप माटी के जांच करवा के वो माटी में बुआई कराओ, उकर से आप मतलब फसल अच्छा मिली, रोग राई कम हो ही। राहेर होए के उरीद होए के मूंग होए, आप बुआ था तो खेत ल देख के बुआ के कैसे प्रकार के खेत में तीनों फसल आप अच्छा से अच्छा ले सका था। ध्यान कराओ, आप जब भी खेत में फसल लगा था तो बीज ला बीजोपचार करके और कतार से कतार बोने के दूरी ला ध्यान रख के ये सब ला करना है, और रोग राय के भी चेत करना है। जैसे ही शुरुआती बीमारी आप ला दिखा थे तो तुरंत दवाई कराओ या उचित उपाय कराओ। आज हम आप मल्ला मूंग और राहेर और उरीद के बुआई के संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दें। आशा करत हन ये जानकारी आप मन बर उपयोगी साबित होही और दलहनी फसल के उत्पादन बढ़ाए में मदद करी। खेती के बात में आज अटके, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात होही। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: दलहनी फसल के बुवाई, इस विषय पर खेती की बात आप तक पहुंची। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर दिया है वाणी जयराम और उत्तरा केलकर ने, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री जन धन योजना।

श्रोताओं, फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ये एक ऐसी योजना है जिसने बैंक के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खोल दिए हैं जो कभी बैंकिंग सिस्टम से दूर रहते थे। श्रोताओं, एक वक्त था जब बैंक में खाता खुलवाना किसी बड़े काम से कम नहीं था। ढेरों कागजात, लंबी लंबी लाइनें और न्यूनतम बैलेंस रखने की टेंशन। लेकिन इस योजना ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। श्रोता, इस योजना के जरिए हर परिवार का कम से कम एक बैंक में खाता होना चाहिए। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो बैलेंस पर भी आपका खाता शुरू हो सकता है, पर इस योजना के तहत आपका पहले से कोई भी बैंक खाता नहीं होना चाहिए। इस योजना में ग्राहक को एक स्वदेशी एटीएम कार्ड मिलता है जिससे आप कभी भी और कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में ग्राहक को 2,00,000 रुपए तक के जमा राशि पर दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, साथ ही साथ ब्याज की सुविधा भी मिलती है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी या मदद जैसे पेंशन, पीएम किसान की राशि सीधे आपके खाते में बिना किसी बिचौलिए के सुरक्षित पहुंचती है। श्रोताओं, अगर ग्राहक खाते का संचालन 6 माह तक लगातार करते हैं तो ग्राहक को 10,000 रुपए तक की लोन की सुविधा भी मिल सकती है, ताकि ज़रूरत के वक्त आपको किसी की मदद ना लेनी पड़े। श्रोताओं, यदि आपके परिवार में या आपके आसपास के परिवारों में किसी का जन धन खाता नहीं खुला है तो एक आधार कार्ड की मदद से आप खाता खोल सकते हैं या अपने पड़ोसियों का खाता खुलवा सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से में लोग, श्रोताओं, शहर से दूर गांव में रहते हैं जहां पर हर तरह की सुविधा नहीं होती है। बैंक की शाखा खोलना भी मुश्किल है। इसके समाधान के लिए राज्य में बैंक मित्र का एक मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है। ये बैंक मित्र गांव-गांव जाकर माइक्रो एटीएम और मोबाइल डिवाइस के जरिए लोगों के खाते खोलते हैं, पैसा जमा करते हैं और उन्हें निकालने की सुविधा भी देते हैं। इस तरह के सहयोग से ग्रामीणों को छोटे छोटे बैंक के कामों के लिए शहर या ब्लॉक मुख्यालय नहीं जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं। इन लोगों को धोखाधड़ी, डिजिटल लेनदेन से बचने के तरीके और फायदों के बारे में भी सरल भाषा में बताया जाता है। आज इस योजना के तहत गांव का आम नागरिक भी देश के मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 50% से अधिक खाते आज महिलाओं के नाम पर हैं, जिससे वे आर्थिक आत्म

निर्भर हो रही हैं। इस योजना का उद्देश्य केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये तो थी जानकारी प्रधानमंत्री जन धन योजना की।

अभी आप सुन रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान, विषय था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए श्रोताओं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता सुनिएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज दिन के 10:00। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय होता है 7:05 पर। कार्यक्रम यादों के झरोखे से का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई सुनिएगा 8:30 से। आज इसमें आप सुनेंगे श्याम शनी साहू, लता वर्मा, शिव कुमार मरावी, बिंदा यादव और साथी से छत्तीसगढ़ी लोकगीत। फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे आज 9:00। प्रस्तुतकर्ता होंगे मानस तिवारी। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे 10:30 पर। आज दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। आज 9:55 पर और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। अब एक नज़र शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज शाम 5:05 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण समय होगा 5:35 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात के तहत विषय होगा कौशल विकास हेतु प्रयास और क्रम में होगा मेरा शहर और सुनिएगा समसामयिकी। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर और इसका शेष भाग सुनिएगा शाम 7:00। शाम 7:20 का समय होगा ग्राम सभा का। इसमें बेरा के गोठ के तहत विषय होगा राष्ट्रीय बांस मिशन। इसी कार्यक्रम में आज श्री मधुप चंदन सहायक संचालक रेशम जांजगीर चांपा से जीतू भैया की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। भेंटवार्ता का विषय होगा तसर कोसा कृमि पालन। रात 8:00 सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे गुलाम अली को रजनी गंधा। इस कार्यक्रम को सुनिएगा रात 8:15 पर। श्रोताओं हम आपको याद दिला दें कि 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:55 होने वाले हैं संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच

0: में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी संस्कृत और हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: स्वागत आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम आज सुबह में। स्वीकार कीजिएगा मेरा स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा घने घने जंगल हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी हैं, जहाँ पर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी सांस लेती है और वहाँ का मौसम हमेशा एक अलग ही अंदाज में होता है। जी हाँ श्रोताओं, वो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसे हम ट्रॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं। श्रोताओं, आज 29 जून को हम सब मिलकर मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। सबसे पहले हम समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्या। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के उत्तर और दक्षिण में दो और काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। हमारे भारत का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ के बाकी हिस्सों के मुकाबले सबसे ज़्यादा धूप और गर्मी होती है। यहाँ कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ने से समुद्रों और नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और यही बादल बनकर बरसते हैं, जिससे यहाँ बारिश भी खूब होती है। श्रोताओं, इसे एकदम सरल भाषा में समझा जाए तो पृथ्वी का वो गर्म, उमस और सदाबहार हिस्सा जहाँ सूरज की धूप और बारिश की जुगलबंदी से सबसे ज़्यादा जीवन फलता फूलता है और यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। श्रोताओं, इस विषय पर आपसे चर्चा करने से पहले मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि आखिर इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2016 में इस दिन को मनाने की घोषणा इसलिए की क्योंकि 29 जून सन 2014 को दुनिया के इतने गर्म और घने जंगलों वाले इलाकों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसने दुनिया को यहाँ की खूबियों और दिक्कतों के बारे में बताया। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इसी क्षेत्र में रह रही होगी, इसलिए इस इलाके

इलाके को ध्यान रखना पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। श्रोता मित्रों, आज ये खूबसूरत हिस्सा खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और शहरीकरण, इन सब ने मिलकर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस हिस्से को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, जल और ऊर्जा का संरक्षण करें, पर्यावरण के प्रति अपनी सोच को जागरूक बनाएं, वो सभी काम करें जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगर ट्रॉपिक्स सुरक्षित रहेंगे तो पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। श्रोता मित्रों, प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अपनी हर आदत को अलविदा कहें। और आइए अब आप और हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हेल्दी व इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हेल्दी व इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: संदेशों के बाद आइए सुनते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
5: नमस्कार, प्रतिदिन की तरह यातायात से जुड़ी जानकारी युक्त दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कबीर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मानिकपुरी पनिका समाज के द्वारा सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव के अवसर पर शहर में झांकी के साथ रैली अर्थात पदयात्रा निकाले जाने की योजना है। आज शाम 4 बजे पदयात्रा जगमल चौक से चलकर गांधी चौक, ज्वाली पुल

0: कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए देकी नंदन चौक पहुंचकर संपन्न होगी। रैली प्रबंधकों से अनुरोध है इस मार्ग में फटाके न फोड़ें। रैली के सदस्य पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए सड़क के एक किनारे एवं कतार में चलें। ध्यान रहे रैली से आम यातायात किंचित मात्र बाधित न हो। यदि इसी बीच फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर तत्काल साइड देवें। इसके साथ ही शहर के साथ साथ प्रत्येक गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों ये सच है कि सड़कों में बढ़ते वाहनों के कारण सुरक्षित चल पाना आसान नहीं है। लोगों के द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों के कारण कई बार बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। प्रायः देखने में आता है लोग सड़कों में बने डिवाइडर को लांग कर एक सड़क से दूसरी सड़क में आना जाना करते हैं। कहीं कहीं शरारती तत्वों के द्वारा डिवाइडर को तोड़कर छोटा सा कट बना दिया जाता है और इसी कट से कुछ लोग दो पहिया वाहन भी पार कराते हैं जो बहुत ही घातक है। ऐसा कभी न करें। जहां नियमानुसार मुड़ने की व्यवस्था है वहीं से सड़क पार करें। ठीक इसी प्रकार किसी भी मोड़ आदि में लोग बिना किसी संकेत के एकाएक वाहन मोड़ देते हैं। ऐसी गलती के कारण नित्य सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः जब भी मुड़ना हो दिन के समय हाथ से और रात के समय इंडिकेटर जलाकर संकेत देने के बाद ही अपना वाहन मोड़ें। वैसे ही कार जैसे वाहन के रुकने पर दाहिने तरफ का दरवाजा कभी न खोलें, यह खतरनाक हो सकता है। हमेशा बाएं तरफ से ही चढ़ना उतरना करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी श्रोताओं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। श्रोताओं हम आपको याद दिला दें कि पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी आज दिन के 10 बजे। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत का प्रसारण समय होगा आज 9 बजे। प्रस्तुतकर्ता होंगे मानस तिवारी। ये तो थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। और श्रोताओं कार्यक्रम आज सुबह में हम याद करेंगे एक ऐसे संत को जो एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने जात पात ऊंच नीच और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए मानव धर्म को सबसे ऊपर माना। उन्होंने इंसानों को बे इंतहा मोहब्बत करना सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं संत कबीर दास जी की। आज उनकी जयंती है। संत कबीर ने कभी भी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। वो जो भी बोलते दिल से बोलते और सच बोलने से कभी नहीं डरते। कबीरदास जी अपना काम करते करते बोलते रहते, गाते रहते और उनके शिष्य उन्हें सुनते रहते थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे संत धर्मदास। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी वाणियों, दोहों और साखियों को इकट्ठा किया और उन्हें लिखकर सुरक्षित किया, जो बीजक नामक महाग्रंथ के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत कबीर जी के अनेकों पद और दोहे शामिल किए गए हैं, जिन्हें गुरु अर्जुन देव जी ने इकट्ठा किया था। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। कबीर जी कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढो आपनो, मुझसा बुरा न कोई। सोचिए अगर हम दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाएं तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। संत कबीर ने हमेशा जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की नहीं।

आज के दौर में श्रोताओं, जहां नफ़रत की आवाज़ें कभी कभी तेज़ हो जाती हैं, वहां कबीर जी का ये दोहा मरहम की तरह काम करता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। श्रोताओं, इस ढाई आखर प्रेम को ही हमें अपने अपने दिलों में जिंदा रखना है। कबीर बाहर नहीं है, हमारी और आपकी इंसानियत में बसते हैं। कबीर की हर वाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सीधे दिल पर चोट करने वाली वो सच्चाई है, जो हम सभी को एक नेक इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनका एक ही संदेश था, भीतर झांको, पाखंड छोड़ो और प्रेम को चुनो। आइए, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हुए उनके

हमें अपने अपने दिलों में जिंदा रखना है। कबीर बाहर नहीं हैं, हमारी और आपकी इंसानियत में बसते हैं। कबीर की हर वाणी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सीधे दिल पर चोट करने वाली वो सच्चाई है जो हम सभी को एक नेक इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनका एक ही संदेश था, भीतर झांको, पाखंड छोड़ो और प्रेम को चुनो। आइए आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हुए उनके प्रेम और समानता के संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करें।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

श्रोताओं, सभी संतों की बातें हमें एक ही संदेश देती हैं, प्रेम और भाईचारा का। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने का समय हो चला है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ।

कार्यक्रम का पहला गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हिमालय की गोद में इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के शब्द धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है पूर्णिमा। गुलजार की रचना पर धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में आइए सुनते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत रचना की है SD बर्मन ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स

आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री 420 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। शैलेंद्र के बोल और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब आप सुनेंगे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम है उजाला, बोल हैं हसरत जयपुरी के शंकर जयकिशन का संगीत।

उजाला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत की रचना की थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। अब से थोड़ी ही देर में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल

0: स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार।

0: गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112311 07 01123 71 07 01123 71 06 और 01123144444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपने सुना लता वर्मा और साथी की आवाज़ों में। श्याम शनी साहू और लता वर्मा की आवाज़ में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। शिव कुमार मरावी और बिंदा यादव की आवाज में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधिया ताती से विशेष भेंटवार्ता सुनिएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज दिन के 10 बजे। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 9 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुतकर्ता होंगे मानस तिवारी। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम अमराई की ओर। शिव कुमार मरावी और बिंदा यादव की आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: लता वर्मा की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई यहीं पर समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे लता वर्मा, श्याम शनी साहू, शिव कुमार मरावी, बिंदा यादव और साथी को।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुत करता है मानस तिवारी।
4: आओ शुरू करी थन कार्यक्रम जिखर नाव है तुहर गोठ हमर गीत। हेलो, तुम्हार गोट हमर गीत कार्यक्रम ले हम बोलत हैं।
5: मैं बिलासपुर से बोलत हूँ।
4: का बूता करता आप मन?
5: खेती बाड़ी करता हूँ।
4: कौन गांव मा?
5: रानी गांव रतनपुर।
4: अच्छा, तो अभी खेती बाड़ी में का चलत है काम बूता?
5: अभी तैयारी चला था खेत जोताई पर।

0: बहुत अच्छा बात है। बारी बेला भी लगाए हो खेत के आसपास?
1: नहीं नहीं केवल धान की कर चला थे।
0: ऐसे ना, तो अभी कौन वाला धान लगा है दार?
1: अभी सरना लगा ही।
0: बहुत अच्छा है, आप मन खेती बाड़ी करत रहा, हमारे कार्यक्रम ले जुड़े रहा, आप मन हमला फोन लगाए, पवन शर्मा जी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हार गोठ हमार गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन।
2: भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, अपन नाम बतावा, कहाँ ले बोला था संगी?
2: मैं पीकर पारा पालचुआ मुंगेली ले बोला था।
0: का हाल चाल है आपके पालचुआ मुंगेली के?
2: सब बढ़िया है।
0: हाँ,
2: रहना वहाँ नहीं हुआ है, मूल निवास से मोर।
0: अच्छा,
2: बड़ी काम तो चलते
0: है। हाँ, आप मन का बूता करता हो?
2: अभी मोर बूता काम गुरु जी हूँ मैं।
0: अच्छा, तो कहाँ?
2: मैं हूँ गौरेला ब्लॉक है।
0: अच्छा,
2: पेंडर रोड, एक हायर सेकेंडरी कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। ज्योग्राफी भूगोल विषय पढ़ाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया है,
2: अभी एडमिशन वगैरह काम चलत है। प्रवेश उत्सव भी मना है विकासखंड स्तरीय रही थे हमारे विद्यालय में। तो जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि सब शामिल हो रहे हैं, पालक विद्यार्थी।
0: ये बहुत अच्छा बात है कि शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से लइकन मा स्कूल के प्रति और शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करे के प्रयास किए जाते
2: जी जी,
0: है ना?
2: सर लइका मन जैसे मेहमान कहीं अपन दूसर यहाँ जाथन, कहीं वो आदर से हमन कुछ पूछ दे, आओ बैठाओ, पानी चाय स्वागत कोई करते तो खुश हो जाते हैं। हमन गए हैं और चाय पानी के लिए पूछा था, वही जन है लइका मन आए नया नया जो छठी कक्षा नौवीं ग्यारहवीं में एडमिशन ले हैं, ऊपर माथा में रोली की टीका मुंह में कराया गई वहाँ, तो लड़का मन एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए, बहुत अच्छा लगी। तो मतलब
0: नहीं, बहुत अच्छा बात है, मंत्र के भी अब शुरुआत होने वाला है स्कूल में, है ना?
2: चल शुरुआत हो गई सर, वो
0: हो गए
2: मंत्र वगैरह है।
0: हाँ, तो आप मन के ही
2: मंत्र है, दोपहर में भोजन मंत्र और शाम के समय फिर से है शांति मंत्र, सरस्वती वंदन वगैरह सब है।
0: तो ये सब तो करा था आप मन,
2: शुरुआत हो गई विद्यालय में।
0: बहुत बढ़िया, तो हम उम्मीद कर सकत हन उत्तरा दिवाकर जी की ये जिन प्रयास किए जात है एक हर सकारात्मक परिणाम जरूर लइकन ऊपर पढ़ी और समाज ऊपर पढ़ी।
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, सर।
0: बहुत अच्छा लगी से आपसे गोट बात करके, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप मन के धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार। तुम्हार गोट हमार गीत कार्यक्रम ले हम बोला थन। जय जोहार। कौन संगी बोला था, अपन नाम बतावा भैया।
3: हाँ, मैं ग्राम धनगावा गौरे पिंडा बरवाड़ी से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ
3: हाँ, मोर नाम है सुहास सिंह ओटी, ग्राम धनगावा।
0: का बूता कर था?
3: धान के तैयारी चला थे।
0: हाँ,
3: धान वही के।
0: हाँ,
3: और अभी इसके बाद जात रहा हूँ ट्रैक्टर खोजे भर। गाय बड़ा भारी है, 1500 चलते एक घंटा
0: ट्रैक्टर के।
3: हाँ, चना बोए रहा हूँ मैं, एक बात अभी का हमारे खरीफ में धान बोए के तैयारी चलते है, वैसे मैं खुर्रा पद्धति से जवा फूल बोए के विचार है एक एकड़ में।
0: बहुत बढ़िया, वो तो बहुत खुशबू वाला चावल है जवा फूल।
3: हाँ, पतला चावल खाए पर है।
0: हाँ हाँ हाँ, तुम्हार बात सुन के ओखर स्वाद हमार मुंह में आए लगी सोहन भैया, है ना? तो बहुत अच्छा लगी आपसे गोट बात करके। तो खेती किसानी करत करत हमार कार्यक्रम के आनंद लेते रही थे आप मन, हमार से जुड़े रहा, हमार कार्यक्रम ला सुनत रहा, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय जोहार।
0: जय जोहार। अही गोट बात के संग आवाज सुनी लता वर्मा के गाये एक गुरतुर गीत ला।

0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत ले हम बोलत हन।
1: हाँ भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। मैं चंद्रपाल मरावी ग्राम अलगीडान विकास खंड पाली जिला कोरबा से।
0: का हाल चाल है चंद्रपाल भैया आपके गांव अलगीडान के सुनावा।
1: ग्रामीण एरिया है तो खेती किसानी के काम चलत है।
0: पानी की क्या स्थिति है आपके यहाँ?
1: पानी थोड़ा थोड़ा बदली रहते भैया, कभी कभी थोड़ा बूंदा बांदी होते, वो
0: जरूरत
1: काफी।
0: जरूरत के पूर्ता हो गए है पानी की? नहीं हो है आपकी यहाँ?
1: नहीं हो है भैया।
0: हाँ अभी सब तरफ अगोरा है ना पानी के?
1: पानी के अगोरा है। हाँ।
0: और का बूता करता चंद्रपाल भैया आप मन?
1: मैं आधार कार्ड बनाता हूँ भैया, आधार ऑपरेटर हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो हमारे कौन कौन कार्यक्रम ला पसंद करता चंद्रपाल भैया?
1: चिट्ठी मिली कार्यक्रम, ये तुम्हारे गोठ हमर गीत, माटी के स्वर आपकी पसंद, और शाम के तो सर वो किसानवाड़ी समाचार के डेली रूटीन है। समाचार हर कोई व्यक्ति ला सुनना चाहिए, शाम के जो प्रसारण होता है बिलासपुर के माध्यम से। ये सब प्रोग्राम ला सुनथन भैया।
0: तो अच्छा लगते हमारे कार्यक्रम आप मन ला?
1: हाँ बहुत अच्छा लगते भैया।
0: हमन से जुड़े रहा और हमारे कार्यक्रम ला सुनत रहा। आप मन हमला फोन लगाए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया।
0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमार गीत ले हम बोलत हन।
2: महेंद्र प्रताप मरकाम सिवरता डबरी पारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ ले बोलत हूँ भैया।
0: हमन आप ला जाना थन, आप जुन्ना श्रोता हो हमार केंद्र के तीव्रता डबरी पारा ले महेंद्र प्रताप मर काम चिट्ठी आत रही थे और सुझाव और पत्र भी आप मन के आत रही थे।
2: पानी क्या गोरा है खेती किसान के काम चालू कर दो कहाँ भैया हमारे।
0: अब सुनी एक गुरतुर गीतला।

0: ये गीत है रईस लक्ष्मण मस्तूरिया के स्वर में। आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हर गोठ हमर गीत ले हम बोलत हन।
1: हाँ भैया, मैं चंदूलाल सिंगरौल बोलत हूँ, गौरेला पेंडर मरवाही से।
0: हाँ, का करता सिंगरौल जी आप मन?
1: सर मैं तो शिक्षक की कार्य से जुड़े हुए हूँ।
0: अच्छा, तो अभी कहाँ है?
1: आकाशवाणी बिलासपुर भी सूरत रेखा में है।
0: कौन कौन कार्यक्रम ला पसंद करता हमर सिंगरौल जी?
1: बिलासपुर के भैया सब कार्यक्रम ला सुनने के मौका मिलते हैं। मैं तो सर 1991 से जुड़े हुए हूँ।
0: बहुत जुन्ना।
1: आजकल का है थोड़ा सा कम सुने पर मिलते, बाकी मेन मेन कार्यक्रम ला जरूर सुनता हूँ।
0: अच्छा, तो कौन कौन कार्यक्रम ला पसंद करता आप मन?
1: सबसे पहले तो चिट्ठी मिली कार्यक्रम ज्यादा हम लोग पसंद आते। ओकर बाद फिर पूरा ग्राम सभा, युवा जगत हो गए, ईमेल करे, गीत सुने हो गए, सुबह के कार्यक्रम हो गए, चिंतन से लेकर माटी के त्योहार वगैरह आपकी पसंद है, ये सब पसंद आते भैया। फोन इन कार्यक्रम भैया बहुत अच्छा लगते है, लेकिन ये काहे बहुत कम फोन लगाए के मौका मिलते है। हमन का स्कूली कार्य में जुड़े थे, बल सुन नहीं पाऊ मैं, 10 बजे आते कार्यक्रम। हाँ, तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है।
0: आप मन हमला फोन लगायो चंदूलाल भैया, और अतिक सुघर गोठ बात करे, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया आपको, मतलब धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हेलो भैया।
0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हर गोठ हमर गीत ले हम बोलत हन।
2: मैं धनेन्द्र कुमार डिकसेना बोलत हूँ भैया, ग्राम ढुकु पथरा विकास खंड पाली जिला कोरबा ले।
0: ये कौन मेर पड़ते?
2: एक पाली ले 7 किलोमीटर है भैया अंदर।
0: अच्छा, का बूता चलत है अभी आपके गांव ढुकु पथरा में?
2: भैया अभी वही खेती किसानी के खुर्रा बोनी चलत है। किसान मन थरहा दे जा रहे हैं, कई मन तैयारी में हवे और महुआ वही तैयारी में हवा थरहा दे के।
0: पानी के अगोरा है अभी अभी नहीं?
2: हाँ भैया, पानी के अगोरा हवा है और हम नील हरित काई बनाए हैं खाद।
0: वाह वाह।
2: हाँ, तो वही मना सुबह शाम पानी दे पड़ से भैया।
0: तो इखर कहाँ ले तुमला प्रशिक्षण मिलिस नील हरित काई बनाए?
2: एक कृषि विभाग में भैया एक दिन गए रहे।
0: अच्छा,
2: बिलासपुर में है नी एग्रीकल्चर कॉलेज। वहाँ डॉक्टर केसरी सर रहते, वो खर कर बीजा लेके आये हमन कल्चर 1.5 किलो लाए रहे। बढ़ात बढ़ात अभी हमारे 15-16 कुंटल बन गए।

0: अच्छा, तो पूरा के खपत आप मन सो हो जाथे कि ओला आन किसान ला भी देता?
1: आन किसान ला देबो भैया, अब मोर तो खेती कम है, 5% निकट हवे, तो मोर 4 किलो के हिसाब से 20-25 किलो डलही हमर है, बाकी ले तो बेचे चले पड़ी भैया।
0: नहीं, बहुत अच्छा बात है कि आप नील हरित काई के इकाई बनाए हैं, निर्माण करत हो और कृषि कार्य में लगे हो। धनेंद्र डिक्सेना भैया, बहुत अच्छा लगीस। आपके गांव ढुकु पथरा कभू मौका मिली तो जरूर आबो, है ना?
1: हाँ भैया, यह है ना, पाली ले 7 किलोमीटर है।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगीस धनेंद्र भैया आपसे गोट बात करके। और आवा एक ठी बढ़िया सो गीत सुन ले थन,
1: हाँ भैया,
0: है ना?
1: जय जोहार राम।
0: जय जोहार भैया, आप मन हमला फोन लगाए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आवा सुनी निशु बंजारे के गाए ये गुरतुर गीतला।

0: आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत ले हम बोलत हन।
1: भैया मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम कौन संगी बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो भाई?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमे तरह ले नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ। भैया
0: का हाल चाल है नारायण प्रसाद जी, सुनावा।
1: हाँ भैया देख रहे खेती बाड़ी बोए के तैयारी हमार पूरा हो गए है, खेत के जोताई है भैया, मेड़ पाड़ के तैयारी है, कांटा कुंटी बीन डरे हवन। बस भैया पानी का गोरा है, पानी गिरी तहले बुवाई के काम हमार चल ही भैया एकदम।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: यही बात में लगे हवन भैया, अभी यही काम हमार चलत है जोर शोर से
0: जी। भैया अब पानी के का स्थिति है अभी आपके गाँव में?
1: अभी कोनो कोनो दिन गिरी भैया थोड़ थोड़। हाँ एक कनी गिरते भैया तहाँ दिन भर कस के घाम कर दे, फिर वही के हाल सुखा जाते भैया है ना, जो कितने हो जाते भैया।
0: सही कहा था, मतलब अभी जम्मो किसान मन ला पानी के अगोरा है।
1: हाँ भैया
0: हाँ। जिन्हें पानी गिर ही तो खेती किसानी के काम जिन्हें वो गति पकड़ ली।
1: हाँ भैया है ना।
0: चला हम उम्मीद करत हन नारायण प्रसाद जी की बहुत जल्दी भगवान पानी गिरा है और हम सब के खेत खार जिन है वहाँ पानी के और खेती के काम शुरू हो जाए।
1: जम्मू के मन जिन हरियर हो जाए भैया, हरा भरा हो जाए ही है ना।
0: सही बात है,
1: खेती किसानी तन मन ढंग ले लग जाबन भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही।
1: हाँ
0: अच्छा एक और बात है रहीस नारायण भैया, अभी जिन पानी नहीं गिरा थे या कम गिरा थे का पा के इसे हो थे, एक बारे में कुछ बताइया।
1: देख भैया का है, दिनों दिन पेड़ झाड़ है जिन हमार पूर्वज के देन रही से भैया, एक प्रकार से जितना भी पेड़ रही से बर है पीपर है और हमार कई ऐसे पेड़ रही भैया जिन खेत खार में बरसों से रही भैया, उगर कटाई हो गई है आज ऐसे हो गए है तो पूरा हमार जमीन जैन है मरुस्थल बन गया हवा भैया। और पानी लिहा अपन आकर्षित करते भैया और गर्मी जिन है कस के हो गए भैया, तो एक तो कारण मैं यही सोचता हूँ भैया पानी नहीं गिरे के, जिन पेड़ झाड़ है हमार पूर्वज के जिन देन है, कई तो हमार पूर्वज के देन है, कई तो हमार सांस्कृतिक देन है, ये मतलब भुलावत जात हन भैया। तो
0: सही बात कहे हो, तो हमला अपन जिम्मेदारी ला समझना है और पेड़ पौधा लगाना है, हरियर भुइया हमला बनाना है। बहुत अच्छा लगी इस नारायण भैया आपसे गोट बात करके, आप मन हमला फोन लगाए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राम राम मानस भाई।
0: राम राम का हाल चाल है, कौन संगी बोला था, कहाँ ले बोला था भाई?
2: हाँ चाल तो सब बढ़िया मानस भैया, भाटा पर जत रही बोलत रहे भाई, तुम्हारे श्रोता हिरू राम साहू खुर्रा बुनी हमन कर तक डर रहे हैं।
0: हाँ
2: और पानी से आज शाम के तो बने भैया।
0: और का चला थे हीरू भैया सुनावा?
2: खेती खरू लग रहे हैं भैया, खातू माटी बिछाई ट्रैक्टर में बुवाए भैया।
0: और खातू के भी थोड़ा से कमी हो है ऐसे लगा थे मोला।
2: अब कहा थे सरकार आदेश देवा से कीकर पीछे दो बोरे दे दी की के।
0: हाँ
2: तो सुरेन भैया का डीपी राखर दी की बतावा मानस भाई। अब हम तो छोटे किसान दान मानस भाई, ऐसे दो चार बोरी हमें लाख से ज्यादा नहीं लगा।
0: ठीक बात है।
2: अब हमारे गांव भैया वही ग्राम स्वरोजगार वाला पचरी निर्माण बनत भैया,
0: तालाब के पचरी बनत
2: है। तालाब के काम चलत है, नाली वाली बनत है और साथ साथ पचरी बनत भैया, गारंटी वाला काम था स्वरोजगार गारंटी वाला वो बंद पचरी से बनत भैया।
0: नहीं बढ़िया है, गांव में विकास के काम होते बहुत अच्छा बात है। हीरू भैया ऐसे समय में पौधा लगाए बर भी अच्छा समय है अभी।
2: हाँ पौधा लगाए तो चार पेड़ आमा लगा ही ना भैया, आए सरपंच द्वारा वितरण करा से पेड़ पौधा।
0: अच्छा गांव में?
2: हाँ पंचायत द्वारा आए ना भैया।
0: हाँ तो ओला बहुत बढ़िया लगावा, उखर जतन करके गाँव ला बढ़िया सुघर हरियर भुइया बनावा भैया है ना।
2: हाँ ना मानस भाई। हाँ हाँ
0: बहुत अच्छा लगी सीरू भाई आप ले गोट बात करके, आप मन हमारा फोन लगाए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राम राम जय जोहर भाई।
0: अही गोट बात के संग आवा सुनी आशाराम पोरते के गाए ए गुरतुर गीतला।

0: कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग दिहीन पवन कुमार थवाइत औ माइकल एक्कमन, कार्यक्रम संयोजन करीन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन औ एकरे संग दया मयाला अंतस्मराग के अनुमति देवा मानस भाईला कार्यक्रम तुम्हर गोठ हमर गीत समाप्त करे के जय जोहार।
1: तुहर गोठ हमर गीत, ये फोन इन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस

0: आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं NR भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

ये गाने की, तो वो अपनी आवाज में गाता, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था, लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा, तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं, अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।

ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात यकीन।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधिया ताती से विशेष भेंटवार्ता सुनिएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज दिन के 10:00 प्रादेशिक समाचार के तुरंत बाद।
1: इनके साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सेनानियों का त्याग और संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने आपातकाल पर आधारित स्मारिका आपातकाल के योद्धा का विमोचन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. अमन सिंह ने कहा कि आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने की सीख देता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार थे। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले सप्ताह के दौरान प्रदेश

0: भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का साक्षात्कार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा अब से कुछ देर बाद 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से नानी और नातिन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात में सोते समय 8 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया। बचाने पहुंची उसकी 56 वर्षीय नानी को भी सांप ने डस लिया। इलाज के लिए ले जाते समय बच्ची और बाद में नानी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अनुमान है कि आज सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित आपातकाल स्मृति दिवस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की है।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं आज हमारे साथ एक कमाल की शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले करीब 36 या 35 वर्षों में बस्तर के 500 गांवों की पैदल यात्रा की है और लाखों लोगों को जागरूक किया है। ये शख्सियत हैं डॉक्टर बुधरी ताती। डॉक्टर बुधरी ताती को हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर बुधरी ताती, हम आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: मैं सुश्री बुधरी ताती, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला। मैं नमस्कार करती हूँ आकाशवाणी को कि यहाँ पर आने का बहुत सौभाग्य है।
0: ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप हम लोगों के साथ में हैं, इस स्टूडियो में हैं और हम आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के लिए, और हम सब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, बस्तर के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये। आपको बहुत सारी बधाइयाँ।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हमने देखा जब उसमें जब राष्ट्रपति महोदया आपको सम्मानित कर रही थी पद्मश्री से, तो आप आदिवासी

0: वेशभूषा में पहुंचे थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो वो जानबूझकर आपने चुना था कि नहीं यही वेशभूषा में जाएंगी आप?
1: ये तो हमारा परंपरा है
0: जी,
1: हजारों वर्षों से, क्योंकि हम वन जंगल पहाड़ से जुड़े हुए, हमारे क्षेत्र का ही वेशभूषा एक प्रकार का सो है यो।
0: जी,
1: तो हम ये सोचे कि हमारा परंपरा है वेशभूषा, हम उसी वेशभूषा से क्यों नहीं जाएंगे, हमारा आदिवासियों का।
0: कैसा महसूस हुआ जब राष्ट्रपति ने, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है पद्म सम्मान से सम्मानित होना, कैसा महसूस हुआ आपको जब चुना गया और अब राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति भवन ने आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त?
1: मुझे तो महसूस तो ये हुआ सर, क्योंकि मुझे बचपना से लेकर आज तक काम किए हैं, हमने कभी सोचे नहीं कि इतना बड़ा जगह में मेरा कभी पहुंच होगा।
0: जी,
1: मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटी बहने कितने निसंकोच रहे, जैसा रहे, बहुत खुशी की बात है सर, ये हमारे समाज का गौरव है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए गौरव की बात है। बस्तर में लोग आपको बुआ और बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, इसी तरह से पुकारते हैं, हम भी दीदी कहेंगे आपको। तो दीदी ये बताइए कि ये जो 35-36 वर्षों की जो आपकी यात्रा है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अपनी शुरुआत से, इस यात्रा का हम जानना चाहते हैं।
1: मेरा जन्म हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिला, एक छोटा गांव है हीरानार
0: जी,
1: हीरानार गांव में मेरा जन्म हुआ है। और मेरा बाल खाल से ही, मेरे माता से ही संस्कार मिला
0: जी।
1: सब लोग नशा कोरी करते रहे, लेकिन मेरे माता जी कभी नशा नहीं की
0: जी,
1: बिल्कुल साधारण थी
0: जी।
1: और अभी उसी कुल में, ताती परिवार में जन्म ली हूँ
0: जी।
1: और 8 साल की छोटे समय से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रहा सर
0: जी।
1: मैं 8 किलोमीटर दूरी में एक दिव्य जीवन संघ है
0: जी,
1: वहाँ जाना आरंभ की। और थोड़ा सा बड़े होने से मेरा इतना रुचि था आध्यात्मिक में, जब स्नान भी करती रही बिना तुलसी माँ के जल चढ़ाए बिना, मैं खाना पीना सेवन नहीं करती थी।
0: अच्छा,
1: ऐसा बचपना से मेरा गुजरा है सर। हमारे सदा प्रेमानंद गुरु महाराज
0: जी,
1: उनके पास जा करके थोड़ा बहुत शिक्षा वगैरह ध्यान करते थे गुरुकुल में
0: जी,
1: और पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद है मुझे आज कहीं जाने को मिला है।
0: तो उस समय किस तरह के आपको आश्रम में शिक्षा, आप ज्ञान मिला जिसने आपको प्रेरित किया?
1: जैसा कि हमारे गुरुदेव पूजा पाठ के बाद हमको बिठाता था
0: जी
1: और शिक्षा के बारे में बोलता था, मानवता के नाते में कैसा होता है, ये सब शिक्षा देता था
0: जी।
1: तो हम बचपन से हम भी अध्ययन करते थे।
0: अच्छा,
1: हमारे गुरुदेव ने इतना अच्छा उपदेश दे रहा है, हम हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं
0: जी,
1: तो इस चीज को हमारे समाज के लिए तो मुझे भी करना होगा। बहुत छोटे समय से मुझे ये बातें अंदर से बाहर आना चालू किया।
0: अच्छा,
1: ऐसा है।
0: फिर अगला पड़ाव क्या था, आप नागपुर भी गई, फिर वहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति में भी आपने प्रशिक्षण लिया, सबके बारे में बताएं।
1: तो इसमें क्या है सर, एक दिन अचानक, हम तो समय 14-15 साल के थे
0: जी,
1: तो अचानक ही मेरे घर में हम बैठे थे
0: जी,
1: तो अचानक एक ही सज्जन आया आंध्रा के, वो अचानक आया दोपहर को
0: जी।
1: आने के बाद ही वो बोला कि बेटी मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या
0: जी,
1: तो मैं 4 दिन से भूखा हूँ
0: जी।
1: वो आया और हमको बोला, फिर खाना खाने के बाद 5 मिनट लेटा, उसके बाद हाथ जोड़ा, बेटी मैं एक ही काम के लाया हूँ कि मुझे आपके जैसा बहने का जरूरत है।
0: अच्छा,
1: अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में महिलाओं का काम भी करना चाहते हैं
0: जी,
1: लेकिन उनके लिए ऐसी समाज के कोई महिला चाहिए
0: जी,
1: तो पाएंगे, इतना ही मुझे बोला है
0: जी।
1: ये बोलने के बाद ही मुझे तो पैसे कि कौन बोलेगा, कहाँ जाएंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे
0: जी।
1: तो बोलने के बाद मैंने तुरंत बोले कि हाँ मैं जरूर आ सकती हूँ, लेकिन घर का अनुमति बिना नहीं होगा
0: जी।
1: तो जैसे वो बोल के चला गया, फिर माँ और भैया के सामने ये बात रखी हूँ, ऐसा ऐसी बात है, मुझे यहाँ से जाने दो
0: जी।
1: मैं बोली कि भैया ऐसा ऐसा एक जन आया है, बता के गए है, मुझे यहाँ से आप छोड़ो
0: जी।
1: नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे समाज से सतत मना है कि कोई भी बहन बाहर नहीं जा सकती है। तो इतना बोलने के बाद भी मैंने उनको अटक किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा जिम्मेदारी अपने आप को बचाने का
0: जी,
1: और आपको भी कभी धोखा नहीं देने का है
0: जी,
1: आप 1 साल के लिए मुझे यहाँ से निकाल दीजिए
0: जी।
1: तो जहाँ भैया नहीं बोलने वाला, स्वयं छोड़ने के लिए नागपुर राष्ट्र सेवा की समिति में, वो महिलाओं का काम था सर
0: जी,
1: वहाँ ले जाके छोड़ दिया
0: जी।
1: मैं भी एक बहन को साथ में ली, तो चलो मेरे साथ आप भी चलो
0: जी,
1: मेरे परिवार के
0: जी।
1: के बाद ही हमको ऐसा लग रहा था हम कहाँ जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग लोगों के जंगल में आ गए हैं।
0: जी
1: बड़ा कष्ट हो रहा है
0: जी।
1: दो दिन तक रोना गाना तो चला है
0: जी।
1: उसके बाद ही हमने जो निष्ठा रखे कि मैंने एक साल का वादा करके आई कि मैं समाज में काम करना चाहती हूँ।

0: जी।
1: और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे जैसे हजारों बहने पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कौन करेगा, मुझे करना होगा
0: जी।
1: ऐसा मैं भी एकदम ठान ली था। उसके बाद फिर ज्यादा नहीं तो 3-4 महीना व्यवहारिकता सीखी हूँ
0: जी।
1: मैं रिटर्न वापस आई हूँ 84 में ही। मैं बस्तर गई, आज हमारे मंत्री केदार जी है, वो छोटे छोटे थे
0: जी,
1: खेलते रहे हमारे सामने उस समय
0: जी।
1: तो मैं उनके गांव में गई, वहाँ किराए में रह करके फिर वहाँ एक छात्रावास का निर्माण किए। निर्माण करने के बाद एक कि पानी के लिए साधन नहीं था तो कुआं खोदे
0: जी।
1: उसके बाद जो है 12 बहनों को वहाँ स्थापित किए।
0: अच्छा।
1: स्थापित करने के बाद ही वो बड़े हो गए धीरे धीरे वहाँ के बहने
0: जी।
1: वहाँ के बहने को जैसे स्कूल खाना उना स्वयं बनाते रहे
0: जी,
1: खाना बना के उनको खिलाते रहे। उसके बाद जो है उनको स्कूल भेज करके
0: जी।
1: मैं भी उनके साथ साथ में गांव में जाती था, आसपास के गांव में
0: जी।
1: छोटे छोटे बच्चों समय तो स्कूल नहीं जाते थे
0: जी।
1: उन बच्चों के लिए कुछ धर्म करके एक बाल संस्कार केंद्र चालू करते थे। 70-80 बच्चे आते थे।
0: अच्छा।
1: फिर गांव से कुछ इकट्ठा करके उनको खाने के लिए सब करने के लिए व्यवस्था करती थी। जैसे 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं उनका सब करती थी
0: जी।
1: वहाँ का जो स्थापित करके वातावरण बना के मैं फिर वहाँ से मैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला
0: जी
1: पासुरक करके एक केंद्र है
0: जी
1: वो अबूझमाड़ का काम करने के लिए मैं वहाँ चले गई।
0: अच्छा।
1: वहाँ जाने के बाद ही मुझे और एक चिंतन होना चालू हो गया कि जैसा कि मेरे जैसा हजारों बहने हैं
0: जी,
1: अगर समाज के लिए कुछ उत्थान करना है तो ऐसा बेटी बहनों के लिए मुझे काम करना होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो काम करेंगे तो फिर कैसा काम करेंगे कि पहले यहाँ का आसपास का वातावरण हम देखेंगे कि क्या जरूरत है
0: जी।
1: फिर 555 गांव को हमने पैदल यात्रा की है।
0: अच्छा। कितने वर्षों के दौरान ये पूरी यात्रा?
1: ये एक साल पूरा लगा।
0: एक साल में आपने 555 गांव की यात्रा की पैदल?
1: डेली एक दिन में 3 गांव 2 गांव करते थे।
0: अच्छा। और आपके साथ टीम रहती होगी?
1: मेरे साथ एक कोई न कोई एक बहन को लेती।
0: अच्छा।
1: वहीं पर उनको प्रशिक्षण होता था, दीदी कैसा जाती है, कैसा बात करती है, लोगों को तैयार कैसे करती है, हमारे जैसे बड़े बहनों को कैसे चुनती है
0: जी,
1: और उनको कैसा बात करने से वो बहन आने को तैयार होती है।
0: अच्छा।
1: उसी में ट्रेनिंग होता था मेरे साथ में जो रहते थे। तो 555 गांव को घूमने के बाद पता चला कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है तो फिर यहाँ के लोकल बहनों की जरूरत है
0: जी,
1: और लोकल बहनों की जरूरत है तो उनको संस्कार भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए और उनको जो प्रेरणा देना चाहिए कि ताकि वो भी यहाँ का काम कर सके
0: जी।
1: ऐसा करके उसी समय से फिर 87 से बहनों का जो बड़ा टीम है 15 साल से 30-35 साल के
0: जी,
1: ऐसा बहनों को ला करके 20-30 बहनों को ला के ट्रेनिंग देना चालू किए, सिलाई बुनाई पढ़ाई
0: जी,
1: संस्कार
0: जी,
1: ऐसा देना चालू किया। उसी समय से फिर बहनों का गति बढ़ गया
0: जी।
1: फिर एक एक टीम से मुझे 10 लोग 12 लोग पूर्णकालीन कार्यकर्ता मिलने लगे
0: जी।
1: वैसा जो शिक्षा के संबंधित में एक ही वातावरण बनाए है
0: जी।
1: फिर छोटे बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते तो ऐसे बच्चों को भी साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ाए ऐसा
0: जी। दीदी आपने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण का, या फिर सामाजिक कुरीतियों की बात हो, सब क्षेत्रों में काम किया है। नशा मुक्ति में भी आपने कमाल का काम किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जन्म दंतेवाड़ा के हिरनार गांव में हुआ, तो वहाँ पे क्योंकि आपकी पैदाइश थी, आपने आसपास देखा, फिर आपने गुरुमगुंडा आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, फिर नागपुर गए, तो इस दौरान में जब आप लौटे और फिर आपने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो आपको क्या लगा कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें सबसे पहला काम करना है, क्या महसूस हुआ उस वक्त?
1: सबसे बड़ा तो एक काम मुझे ध्यान में आया, जैसे कि हम बचपना से देखते थे
0: जी,
1: एक कुरीति समरसता नहीं था। जैसे उस समय तो हैंडपंप नहीं होता था गांव में, झरना से पानी निकालता रहा, वहां से पानी को निकाल के ले जाना पड़ता, उसके लिए भी जाति प्रथा बहुत था।
0: अच्छा।
1: हम बहुत दूर खड़े रहते रहे।
0: अच्छा।
1: दूसरे जाति के कोई आके पानी ले जाएंगे, फिर हम ले जाने से उस पानी को सफाई करेंगे, वहाँ से निकाल के साफ करके अपना पानी भर के ले जाते रहे
0: जी।
1: ये हमको देखने को बचपना में मिलता रहा
0: जी।
1: और एक साथ कभी खाना नहीं, एक साथ बैठना नहीं, महिलाओं में बहुत जात पात रहा, छुआछूत रहा
0: जी।
1: तो मैं इसको भी सोची कि जब तक ये हम एक साथ नहीं बैठे, एक साथ नहीं होंगे, तो फिर हमारा समाज अधूरा सुधरेगा। तो ये सबको एक में करने के लिए क्या करना होगा, फिर इसको हम लोग उनके साथ बैठना उठना चालू किए, एक साथ खाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं खाना, छूत मानना, वो अपना अपना चूल्हा जलता रहा।
0: अच्छा।
1: खाने के लिए
0: जी।
1: ऐसा करते करते फिर आगे जा करके फिर एक साथ

0: आने लगे। एक बार तो 5-7 हजार लोग आए, सब चूल्हा जलने लगा
1: जी,
0: कोई एक साथ खाना खाने को तैयार नहीं, इतना छूत मानते थे।
1: अच्छा,
0: फिर लोगों को अनेक प्रकार का वो सब सिखाने के बाद जो है बताने से लोग साथ में आए, फिर गाने लगे, फिर कई प्रकार का जो है समस्या समाधान में आया, समरसता आया। आज एक साथ खाना, एक साथ उठना, हजारों बहनें एक साथ मिलजुल के, उसमें कोई जात पात नहीं, इसको संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करना,
1: बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, सबसे पहले आपने सामाजिक एकता लाने का दूर करने का काम किया, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बाद में, पहले तो एकता जरूरी है। जी जी, और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपने महिलाओं को वहाँ बहनों को जागरूक किया, इसके बारे में बताएं, क्योंकि अशिक्षा भी एक बड़ी समस्या है। आदमी पढ़े लिखेगा नहीं तो उसको पता ही नहीं हुआ उसका अधिकारों के बारे में, इसके बारे में कैसे आपने लोगों को जागरूक किया
0: इसके बारे में? क्योंकि जैसे समरसता तो एक साथ हो गया है
1: जी,
0: लेकिन पढ़ाई लिखे होना भी महत्वपूर्ण है सर
1: जी।
0: सबसे पहले तो हम खुद भी बहुत पढ़ाई लिखे नहीं थे
1: जी,
0: हम गुरु के पास जाकर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख रहे थे
1: जी।
0: पहले हम लोग 5वीं 8वीं 10वीं किए
1: जी,
0: तब हमको भी समझ में आया कि दूसरे को भी हम ऐसा कर सकते। फिर बेटी बहनों को पढ़ने के लिए आगे लाए, लोग चाहते थे कि बेटी है तो दूसरे के घर जाने वाली है
1: जी,
0: इसको पढ़ाई लिखाई करना क्या मिलेगा, हम लोगों को खर्च क्यों करेंगे, ऐसा लोगों की सोच था
1: जी।
0: लेकिन बाद में सब उनके सामने जाना, उनके साथ बात करना, ये सब करके जो है पढ़ाई लिखाई का भी, बेटी बहनों का हम पढ़ाई के बारे में आगे सोचे हैं, आगे बढ़ाए हैं, बड़े बड़े बहनों को भी साक्षरता बनाए। उसमें से 545 ऐसा कुछ बहने हैं
1: जी,
0: पूरा एकदम अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए हैं।
1: अच्छा,
0: कभी स्कूल नहीं गए, ऐसे बहनों को ला करके
1: जी
0: हमने साक्षरता बनाए, पेपर दिलाए, किसी ने की सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से ऐसा उनको शिक्षा देना और वहाँ ले जाके पास कराना
1: जी।
0: आज जो है ऐसी बहने हर पोस्ट में गए, अपने आप को समझ में आया कि हर पोस्ट में गए हैं, नर्स में गई है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई टीचर बना है, कभी स्कूल नहीं गया, आज वर्तमान में टीआई भी बना है।
1: अच्छा,
0: आरए की बाल विकास अधिकारी बनी है
1: जी,
0: ये कभी स्कूल नहीं गई
1: है। कितनी बड़ी बात है, देखिए शिक्षा के माध्यम से आपने उनको सशक्त बनाया,
0: सशक्त बन गया,
1: आत्मनिर्भर बन गई वो बहनें
0: जी जी,
1: जी।
0: उसमें से साथ साथ में सिलाई है, बुनाई है, ये सारे जो है उनको सशक्त कारण उसको बनाए है, बड़े बड़े कलेक्टर बने
1: जी,
0: बड़े बड़े अफसर बने
1: जी।
0: अब उनको समझ में आया, शिक्षक होने के नाते
1: जी
0: सब जगह पहुंच गए, सब जगह अपने आप को समझ गए, बड़े से बड़े जगह में बैठ रहे हैं।
1: बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा काम किया। इसमें एक बात और भी है, क्योंकि आपने वहाँ पे ये भी पाया कि वहाँ समाज में, गांव में नशा भी एक बहुत बड़ी बुराई है, और वो भी लोगों के विकास में एक बड़ा रोड़ा होता है, तो नशा मुक्ति के लिए भी आपने बड़ा अभियान चलाया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नशा पुराने लोगों का है, लोग कहते थे कि नशा तो अनिवार्य है कि हमको पीना ही है
1: जी,
0: लेकिन हमने 1984 से लेकर 86 आज तक भी हम गांव में जाने लगे
1: जी,
0: कभी भी हम नशा के बारे में नहीं पीना ऐसा हमने ज्यादा दबाव नहीं किए
1: जी,
0: लेकिन हम उनके साथ ही जाना, बैठना, खाना, उनके साथ रहना, अपना व्यक्ति समझ गए कि दीदी जी ने जितने भी इनके ग्रुप है आज ही 1984 में भी देखे, आज भी देख रहे कि इन लोग कैसे स्वच्छता है
1: जी,
0: अगर नशा नहीं करने से व्यक्ति स्वाभिमान कैसा बढ़ता है,
1: बिल्कुल
0: अपने आप व्यक्ति संस्कारित होता है
1: जी।
0: तो ये जो है नशा मुक्ति में लोगों के साथ मिलते जुलते आज हजारों बहने नशे से मुक्त हो गए, हजारों पुरुष मुक्त हो गए
1: जी। आपने वो भी किया, लोगों को शिक्षा की अलख जगाई आपने वहाँ पर, आपने स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अस्वच्छता से, है ना, स्वच्छ नहीं रहने से और तमाम अंधविश्वास से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, आपने इस बारे में भी वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, और हमें तो पता चला है कि आपने जो जड़ी बूटियां होती हैं उसके माध्यम से भी उपचार करके कई लोगों का इलाज किया, इसके बारे में बताएं।
0: हम लोग जैसे हमारा टीम है, मेरे साथ बहुत सारे बहने हैं अभी भी
1: जी,
0: हम गांव में महिला जागृति शिविर करके हम लोग रखते थे
1: जी,
0: 10 बजे से 3 बजे तक
1: जी।
0: उसमें ये जो स्वास्थ्य के संबंधित छोटे छोटे चीज है
1: जी,
0: वो सभी हम लोग प्रथम जो है गर्म पानी करके पीना, गड्ढा से पानी लाते है तो छान के लाना
1: जी,
0: ढक के रखना, हाथ पैर ठीक से धोना, बच्चों को भी धुलाना, आराम सफाई कैसा रखना
1: जी,
0: ये छोटे छोटे बात होती है
1: जी,
0: उसको हमने शुरू किए
1: जी।
0: और जो गांव में मिलता है, जो जो भी मिलता है हमारे पास
1: जी,
0: उसको अंकुरित करके खाना
1: जी,
0: और जैसे पपीता मिलता है तो लोग बेचने ले जाते लेकिन खाते नहीं है
1: जी,
0: पपीता।

0: खाने से, हमने सुने थे कि एक टुकड़ा खाने से 4 टुकड़ा मांस खाते उसके बराबर का ताकत मिलता है। पपीता खाइए, हांक का तेज रहेगा, फिर हमारे पेट में पित्त होता है, पपीता खाने से पित्त अपने आप दूर होता है
1: जी।
0: ऐसा कई छोटे छोटे जानकारी देते देते ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग परिवर्तन हो गए, अच्छे हो गए। और एक समय में एकदम बीमार हो करके पूरे झुक के चलते थे, पतला दुबला होते थे, उसको एल्ले धक्की बोलते हैं वहाँ लोकल भाषा में, ओठी भी बीमार जिसको होता है उसको एल्ले धक्की बोलते हैं। ऐसी लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित में एक साथ में 80 लोग ठीक हो गए। और दूसरा है कि कभी कभी जो गांव में सिर दर्द होता है पूरा, किसी किसी का बाल भी झड़ गया था, ऐसी व्यक्ति दवा खाने आता है, फिर वो जड़ी बूटी का दवा देने से आदमी ठीक हो गए।
1: मतलब प्रकृति हमको सब कुछ देती है।
0: हाँ, जानकारी लेना पड़ता है,
1: जरूरी है।
0: हमारे बहने लोग पहले से ही दादा परदादा से सीखे रहते थोड़ा बहुत
1: जी,
0: तो वो अभी कभी कभी समय आने पर उसको देते हैं। और जो हमारे पास में कई प्रकार का अनाज होता है, कमजोरी के लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं, तो कमजोरी के लिए इतना सारे सब होता है कि 9 प्रकार 10 प्रकार का जो सामग्री होता है उसको इकट्ठा करके उसको पिसवा के लड्डू बना के खाना, उसका सूरन बना के स्वयं इन लोग देते हैं बहने लोग
1: जी।
0: तो उससे कितने बहने कितने भाई लोग ठीक हो गए।
1: अरे वाह, बहुआयामी काम है आपका। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो पूरा सफर है वो इतना आसान भी नहीं रहा, कई बार आपको विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार तो हमले भी हुए हैं, कुछ ऐसी घटना बताइए, क्योंकि हमें पता चला है कि अबूझमाड़ में ही कुछ लोगों ने हमला करने का भी प्रयास किया था, तो बहुत आसान नहीं रहा यह सफर आपका।
0: वैसे तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके काम करना चाहता है उसको तो बिना घटना के कोई सफल नहीं हो सकता है।
1: जी।
0: हम गांव में जाते हैं तो किसी गांव में हमारा कोई पहचान नहीं है
1: जी,
0: उस गांव में जाकर के रात में मुखाम करते हैं
1: जी,
0: इस गांव से आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी हम लोग सोचते हैं
1: जी,
0: ऊपर वाले के ऊपर सौंपते हैं कि जो बचाने वाला आप है, नहीं बचाने आप ईश्वरी काम
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: एक दिन हमारे साथ में अभी एक बहन आई, हम बहुत दूर में चले गए, करीबन 80-70 किलोमीटर
1: जी,
0: एकदम नया गांव है
1: जी,
0: हमारे छत्तीसगढ़ आंध्र ऐसा जुड़ा हुआ
1: जी,
0: उस गांव में गए, सुनसान गांव है। वहाँ जाने के बाद ही अचानक लोग एकदम आ गए
1: जी,
0: महिला पुरुष सब पर्ची उर्ची जितना उनके पास हथियार होता है सब लेकर आए
1: जी,
0: लेकर आने के बाद ही आ गए, हमको समझ में नहीं आ रहे सब क्या कर रहे हैं, कोई सल्फी पीने के लिए नशा वाला लाए, नशा पिलाना है, मार डालना है, ऐसा सोचे
1: जी,
0: हम लोग तो कुछ नहीं सोचे हैं। तो मेरे साथ में आज मेरे सामने बगल में बैठी है बहन, जो बहन चिमक रही है पीछे से, और आज तो हमारा निश्चित मौत है, मेरे बड़ी वाली बहन रहती है उसको बिना देखे मेरा मौत तो आज निश्चित है, इतने सारे लोग मारने के लिए हम यहाँ पे कैसे जाएंगे, तो हम 70-80 किलोमीटर में है
1: जी,
0: तो हम कैसे जाएंगे, ऐसा सोचते थे। मैं मन मन में बोले उसको कि कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है
1: जी,
0: ऊपर वालों का कृपा है, अगर मौत होता है तो भी हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं हम
1: जी।
0: तो इतना बड़ा घटना सामने आने के बावजूद भी ऊपर वाले ने बराबर वो सब ठीक ठाक किए, पता नहीं क्यों शांत हो गया, पूरा अपना पर्चा अपना सब हथियार नीचे रख के,
1: अच्छा,
0: और नीचे रखने के बाद बोलने के लिए कि आपको पीना है, फिर हमने हाथ जोड़े कि हम तो कभी नशा पीते नहीं है
1: जी,
0: तो आप पी लीजिए, हम आपको देते हैं डालते हैं, फिर हमको अलग से खाना बना दिया, सब नहीं खाएंगे बोलने से, इतना मारने खिलाने के बावजूद भी
1: जी,
0: फिर खाना बना दिए
1: जी,
0: खाना बनाने से इतनी सी दाल बनाए उसमें इतना सारे छोटा माड़िया मिर्ची होता है, इतने तेज होता है
1: जी,
0: जितना दाल उतना मिर्ची डाले,
1: ओ बाबा,
0: और हमको खाने के लिए दे रहे, हम उनके पास खाना पड़ा, हम खाए,
1: इतना तीखी दाल आपको खाना,
0: खाए हैं
1: जी,
0: खाने के बाद ही लोगों को विश्वास हो गया ये लोग हमारे लिए आए हैं, हम इनको मारने के लिए कोशिश किए
1: जी, तो उनको पश्चाताप हुआ फिर।
0: हाँ
1: जी,
0: जो आदमी अच्छे कार्य करना चाहता है उसको कोई न कोई बचाने वाला भी होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऐसे कई प्रकार का समस्या, कई संघर्ष हुआ, कभी नदी नाला से है, कभी कहाँ से है, ऐसी तो बहुत है सर।
1: आपका जो समाज के प्रति जो समर्पण है, काम के प्रति जो समर्पण है, तो वहाँ पर लोग आपको बुआ कहते हैं, बड़ी दीदी कहते हैं, कैसा लगता है जब संबोधन से बुलाते हैं आपको?
0: जब मैं पहले जाती रही हमको देख करके दरवाजा बंद करते थे
1: जी,
0: अरे इन लोग आए हैं तो हमारे बच्चों को ले जाएंगे कि हमको ले जाएंगे, ऐसा दरवाजा बंद होता रहा
1: जी,
0: लेकिन वही घर के वही परिवार कोई समाज के लोग बड़े दीदी के नाते कभी नाम नहीं लिया आज तक
1: जी,
0: मुझे नाम नहीं लिए, बड़े दीदी के नाते बात करते थे और बुआ के नाते बात करते हैं, इतने रिश्ता बना दिए, परिवार बना दिए
1: जी,
0: तो मुझे तो अच्छा लगता है कि आज ये परिवार कितने

0: खरीद में आए हैं।
1: जी दीदी, आकाशवाणी के साथ भी आपका संबंध बहुत पुराना रहा है। आपने बताया कि आज से 20-25 साल पहले आकाशवाणी ने जगदलपुर में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और ये भी आपने बताया है कि आपका बैंक का सबसे पहली बार खाता भी आकाशवाणी की वजह से खुला।
0: जी,
1: इस वाक्य के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: ये तो बहुत सही बोले आपने
1: जी।
0: मैं 1986 में दक्षिण बस्तर में काम करने गई
1: जी।
0: मुझे लगभग 87 में आकाशवाणी में बुलाया गया। मेरे साथ में एक बहन थी, हम दोनों बहन आए हैं, और मुझे उस समय मैं भी खुद मेरा आयु भी कम था। हम आकाशवाणी में बुलाए तो हमको तो मालूम नहीं आकाशवाणी क्या होता है
1: जी।
0: इसी प्रकार से हमको अंदर ले गए
1: जी।
0: अंदर ले जाने के बाद पूछा गया कि हमारा बस्तर में जो लोक कथा होता है पुराने लोगों का
1: जी,
0: ऐसा कथा के बारे में 14 मिनट का एक किसी का 21 मिनट का दिए थे
1: जी।
0: तो हमने एक दूसरे कथा किए बोले, फिर हमको तो मालूम नहीं कि यहाँ से कुछ मिलता है
1: जी।
0: हम तो उसके लिए नहीं आते हम
1: जी।
0: तो हमको एक चेक दिया गया।
1: अच्छा,
0: दोनों बहन को
1: जी।
0: और चेक लेके हमने सोचने लगे चेक क्या होता है, इसमें
1: जी।
0: क्या पैसा है कि क्या, हमको भी मालूम नहीं
1: जी।
0: फिर किसी को दिखा ये क्या होता है, फिर आकाशवाणी बोले जगदलपुर
1: जी
0: ये जो है आपने 14 मिनट बोले उसके लिए सरकार ने आपको आकाशवाणी तरफ से आपको सहयोग दिया है
1: जी।
0: ये दोनों के लिए दो चेक है, आप इसको लेके जाइए
1: जी।
0: फिर गर्मेड़ी बैंक में लेके गई, ऐसा ऐसा आकाशवाणी से मदद मिला है तो इसको क्या करना होगा
1: जी।
0: तुरंत बोला इसको खाता खोलेंगे
1: जी।
0: आपका पैसा जो यहाँ है यहाँ पर जमा हो जाएगा
1: जी।
0: और आपका एक ही पासबुक बनेगा।
1: अच्छा,
0: तो आप जो है इसी के माध्यम से आगे भी आप आर्थिक सुधारने के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं
1: जी।
0: ऐसा बोल के वो खाता खोल दिया
1: जी।
0: मुझे अनुभव विश्वास हो गया कि हमारे गांव में तो कहीं खाता नहीं खोलते हैं
1: जी,
0: मालूम नहीं है
1: जी।
0: पैसा रहता है तो गड्ढा में छुपाते तो दिमाग पकड़ता है
1: जी,
0: नाली कपड़ा में छुपाते हैं तो कपड़ा के अंदर से चूहा खाते हैं
1: जी।
0: तो हमने महिलाओं के बीच में जाने लगे, देखो हमारा आकाशवाणी तरफ से हमको सहयोग मिला है तो हमने खाता खोले हैं और हमारा सुरक्षित है
1: जी।
0: तो आप भी खाता खोल सकते हैं। हम लोग ग्रुप ग्रुप में महिलाओं को लाने लगे।
1: अच्छा,
0: ग्रामीण बैंक में बारसूर में
1: जी।
0: तो लोग बड़े लोग बैठे हैं
1: जी।
0: अगर यहाँ पैसा जमा करेंगे गांव का पैसा ये कब देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे ये हमारे लिए बैठते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैठे। ऐसा करते करते अब जो है हमने जो संगठन की तरफ से जो लोगों को ला के खोले हैं
1: जी,
0: वो लगभग 15,000 महिलाएं खाता खोले।
1: अच्छा,
0: आज लाखों बहने खाता खोल के
1: जी
0: अपना अपना विकसित काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मतलब आकाशवाणी का जो एक चेक था
0: हाँ,
1: वो आज लाखों के महिलाओं के खाता खुलवाने का आधार बना।
0: आकाशवाणी ने हमको प्रेरणा किया
1: जी। अच्छा दीदी, ये हम मतलब जानना चाहते हैं कि आप तो पिछले करीब 35-36 सालों से काम कर रही हैं बस्तर के इलाके में, 500 से अधिक गाँवों की पैदल आपने यात्रा की है, लाखों महिलाओं को जागरूक किया है, अब आपको एक राष्ट्रीय पहचान भी मिली है पद्म सम्मान के माध्यम से, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है ये हम जानना चाहते हैं, और भी ऐसी महिलाएं होंगी जो आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगी वो कैसे आपसे जुड़ सकती हैं इसके बारे में बताएं।
0: एक तो पहले से भी हमारा यही उद्देश्य है
1: जी,
0: हम ये चाहते हैं कि देखो राष्ट्र स्तर पर हमको आगे के लिए उत्थान मिला है वो तो
1: जी।
0: मैं तो बोलती हूँ समाज के लिए बहुत बड़ी चीज होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हमारी बेटी बहने
1: जी
0: बहुत पिछड़े हुए थे, बेटी बहनों के नाते किसी के ऊपर कोई वो भरोसा नहीं था, आज भरोसामंद हो गया है
1: जी।
0: और हम बेटी बहनों के चाहते हैं कि अधिक से अधिक बेटी बहनें आगे बढ़े
1: जी,
0: बहुत पढ़े लिखे हो और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए और जो नहीं करने का ऐसा चीजों को भी करे और भविष्य को बनाए रखे, कोई भी शिक्षा हो स्वास्थ्य हो किसी चीज में भी। अब यही चाहते है कि और हर बहन पीछे न जाते आगे बढ़े
1: जी। दीदी, बस्तर में केंद्र सरकार के राज्य सरकार के प्रयासों से एक बड़ी समस्या जो पिछले करीब 6-7 दशकों से थी माओवाद की समस्या, उससे अब बस्तर मुक्त हुआ है, अब वहां पर जो है वो हिंसा की जगह अब विकास हो रहा है बस्तर के इलाके में और एक नया सवेरा हो रहा है बस्तर में, तो ऐसे में जो वहां पर लोग हैं अभी भी बड़े पिछड़े इलाके भी हैं अब तो जानती हैं, उनमें जो लोग हैं जो अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं अपने उन भाइयों बहनों से आप क्या अपील करना चाहेंगी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: ये तो जैसे कि नक्सलियों का मुक्त तो हुआ है
1: जी,
0: लेकिन इतने सालों से उनके जो मन में रहा
1: जी
0: वो तो तुरंत छूटेगा नहीं
1: जी।
0: दूसरा है कि लोग 20 साल से अपना जगह को छोड़ करके आए हैं
1: जी।

0: जितना कमाया और छोड़ करके खा ले आए हैं, और उन्होंने कितने उसके मन में रहा होगा कि एक पेड़ भी लगाते हैं तो पेड़ भी अपना घर जैसा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अपना घर को छोड़ कर आए तो कैसा 20 साल बिताए होंगे
1: जी।
0: सबके मन में ऐसा हो रहा है कि हमको वापस जाना है। आज सभी जगह के लोग वापस जा रहे हैं
1: जी।
0: और जहाँ पर उनका घर रहा पता नहीं, पूरा जंगल हो गया 20 साल में
1: जी।
0: अपना घर को पहचान रहा है कि मेरा घर कहाँ रहा
1: जी।
0: हम लोग ही केंद्र सरकार राज्य

0: बिजली, घर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पानी का साधन है, ये पांच छह बिंदु है कि उनके लिए आज के दिन में जरूरत है
1: जी।
0: और उसमें से क्या है, अगर हम आज नहीं करेंगे तो और भी कहीं का बाहरी शक्ति भी आता है
1: जी, उनको बहका सकते
0: बहकाता
1: हैं।
0: है
1: जी
0: बरगलाता है
1: जी,
0: पर इनको ये व्यवस्था होना चाहिए
1: जी
0: तो ये महत्वपूर्ण पांच छह बिंदु है उनके लिए।
1: जी
0: हमें ये संदेश देना चाहते भाई इसको हमको ठीक करे और उनको पकड़ के साथ में रखे और हमको हिम्मत दे भाई तुम जहाँ भी जाओगे हम आपके साथ में हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने दीदी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ चर्चा करके और आपके इस पूरे यात्रा को जान के। आज इतने साधन संपन्न हैं लोग, लेकिन तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के बारे में अभी भी जो है वो कई बार सोचता है व्यक्ति। आप उस समय जब कुछ भी साधन नहीं था आपके पास में, उस समय आपने पैदल जो है वो सैकड़ों गांवों की यात्रा की, लाखों महिलाओं को जागरूक किया, वाकई एक महायज्ञ के समान है आपका काम हमारे लिए। तो आपको एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ पद्मश्री के लिए।
0: मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे इतना बड़ा हमारे राज्य का ये स्थान है उसमें इतना बड़ा आकाशवाणी में यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों ने हमारे लिए बहुत प्रयास किए यहाँ लाए और मैं यहाँ आने के बाद ही मेरे से जो त्रुटि हुआ होगा तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, आप यहाँ पर यहाँ तक लाए और हमको याद किए।
1: आपसे कोई त्रुटि नहीं हुआ, आपने क्या है अपनी पूरी बातों को दिल से कहा है और हमारे श्रोताओं ने उसको दिल से ग्रहण भी किया है। तो हम एक बार पुनः आपके बहुत सारे आभारी हैं, हृदय से आपका आभार। तो श्रोताओं ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुधरी ताती से विशेष भेंटवार्ता, जिसे हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी के नाम हैं दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, लालपुर से लुकेश यदु, समीर यदु और इनके साथी ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, राज पैलेस भवनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आपने फरमाइशी पत्र भेजा है जिनके नाम है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, उत्तर प्रदेश से ही है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार और इनका पूरा परिवार। भाटापारा से आप हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत, भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सियाराम, अश्विनी वर्मा, सोनाडीह से आप हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू, मेघ, नीलिमा और इनके बहुत सारे साथी। शांतिनगर भाटापारा से ही हमें पत्र मिला है इस गाने के फरमाइश के लिए रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अलफैज खान, हजीरून, निशा, सादिया खान। बिल्हा से आप हैं शेख नासिर, महजबीन बानो।

0: तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
0: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के शब्द हैं, नदीम श्रवण का संगीत। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप हैं लूतरा खमरिया से। बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और इनकी साथी। चांदनी चौक पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। मोहाली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल और इनके साथी।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लीजिए सुनिए हमारे बिलासपुर की आज की यातायात व्यवस्था।
2: कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के साथ, मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कबीर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना।

0: समाज मानिकपुरी पनिका समाज के द्वारा सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव के अवसर पर शहर में झांकी के साथ रैली अर्थात पद यात्रा निकाले जाने की योजना है। आज शाम 4 बजे पद यात्रा जगमल चौक से चलकर गांधी चौक, जवाली पुल, कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए देवकी नंदन चौक पहुंचकर संपन्न होगी। रैली प्रबंधकों से अनुरोध है इस मार्ग में फटाके न फोड़ें। रैली के सदस्य पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए सड़क के एक किनारे एवं कतार में चलें। ध्यान रहे रैली से आम यातायात किंचित मात्र बाधित न हो। यदि इसी बीच फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर तत्काल साइड दे दें। इसके साथ ही शहर के साथ साथ प्रत्येक गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, ये सच है कि सड़कों में बढ़ते वाहनों के कारण सुरक्षित चल पाना आसान नहीं है। लोगों के द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों के कारण कई बार बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। प्रायः देखने में आता है लोग सड़कों में बने डिवाइडर को लांग कर एक सड़क से दूसरी सड़क में आना जाना करते हैं। कहीं कहीं शरारती तत्वों के द्वारा डिवाइडर को तोड़कर छोटा सा कट बना दिया जाता है और इसी कट से कुछ लोग दो पहिया वाहन भी पार कराते हैं, जो बहुत ही घातक है। ऐसा कभी न करें। जहां नियमानुसार मुड़ने की व्यवस्था है वहीं से सड़क पार करें। ठीक इसी प्रकार किसी भी मोड़ आदि में लोग बिना किसी संकेत के एकाएक वाहन मोड़ देते हैं। ऐसी गलती के कारण नित्य सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः जब भी मुड़ना हो दिन के समय हाथ से और रात के समय इंडिकेटर जलाकर संकेत देने के बाद ही अपना वाहन मोड़ें। वैसे ही कार जैसे वाहन के रुकने पर दाहिने तरफ का दरवाजा कभी न खोले, यह खतरनाक हो सकता है। हमेशा बाएं तरफ से ही चढ़ना उतरना करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। साजन फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के शब्द हैं, संगीतकार नदीम श्रवण, पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, निशा मानिकपुरी, विभय दास मानिकपुरी, हथनीपारा भाटापारा से आप हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा, देवरी भाटापारा से ही आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिला है श्रीमती पूर्णिमा सारथी का। पूजा आरती भाव्या सारथी, आप सभी ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। श्रीमती सुषमा सारथी नवगढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डॉली और पूर्वेश साहू। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी गाने के लिए हमें कुछ और फरमाइशी पत्र मिले हैं और इन श्रोता साथियों के नाम हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाई

चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। शनिचरी बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, शौर्य जैन, सौरभ जैन और शुभम जैन। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू। मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू और उमा देवी साहू। इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं पर समाप्त करते हैं।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जयमाला
0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
6: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजने को हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,

0: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ।

0: जंगल वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का, तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
2: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
2: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, न लकड़ी की कमी न फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
2: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या भूल बातें कर रहे हो दोनों?
2: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
0: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। आदत नहीं है ना।
1: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
0: वो
1: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
1: अरे अब चलो भी।
0: चलो
2: चलो, चलो।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, तेरी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों,
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: ये देखो ये पेड़,
1: देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो। इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
1: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।

0: हाँ
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बधवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो रहने दे इस पेड़ को। तो
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: समझ गई अम्मा,
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है।

0: तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीरा फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में यह अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:55 होने वाले हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रायपुर के सोनपेरे स्थित असंग देव आश्रम में आयोजित महोत्सव में शामिल होंगे और बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के सोनपेरी स्थित असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर को हेलीकॉप्टर से चांपा के लिए रवाना होंगे, जहां वे थाना पारा स्थित देवांगन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कबीर जयंती पर आज प्रदेश भर में सभी प्रकार के मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेशनल मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल होंगे। गौरतलब है कि 20 जून से शुरू हुए इस शिविर में 41 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अलका लांबा और सचिन राव जैसे कांग्रेस के अन्य नेता शामिल हुए। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत

प्रस्तुत किए जाएंगे। बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। इस दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का वैदिक विधि विधान से महाभिषेक होगा, जिसके बाद आगामी 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जयस्तंभ चौक स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय में आज शाम 4 बजे से डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी आरटीओ नाका के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लगभग 15 लाख रुपए का 31 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी हरियाणा के निवासी बताए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने गांजा ओडिशा से हरियाणा ले जाने की बात स्वीकार की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए थे, उन्हें आज दूसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिला रही हैं। वहीं कल भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। कबीर जयंती पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रायपुर के सोनपेर स्थित असंगदेव आश्रम में आयोजित महोत्सव में शामिल होंगे और बस्तर का ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज से देव स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे आप शाम 6:10 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: सेना के टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस रक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी

0: निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ, अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीलें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से, इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूस महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट। मैं

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।

0: कोतवाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहां आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहां नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा लें किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान

जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं मालिक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाना उन्होंने बताया और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं मालिक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है बाकी राज्यों की अपेक्षा, ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइने जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था। पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है, दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता, ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी एक पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाऊ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छू कर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाये हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी

हैं वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं, उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं

0: जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है, लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रही है कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दुन की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।
5: ए दिल।

0: बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही कि मैं ना तो रूठती हूं और किसी को मनाना

भी नहीं आता भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने एमबीबीएस का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की, काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा एमबीबीएस यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हुई, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठे और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूं, ये भी बहुत

अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते ही कार्यक्रम गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले गुट्टी चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिए जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं।

बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।

0: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग

0: लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे, वो थी।

0: का ये अंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे वो थी हम थे।

मैं कहता हूँ दम तो लेने दो। हा हा हा हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो गए।

0: बच्चा आ हा हा। हम थे मोती और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे।

0: विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।
2: टी कैट, कैट माने बिल्ली।
3: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
2: सी ए टी कैट, कैट माने

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें। फिल्म उजाला।

0: हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सखी सहेली
1: की सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल हाँ। रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारे हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज हाँ। क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है, जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: हाँ उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नहीं?
2: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
2: वे देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर।
0: जी
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
4: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
4: हाँ,
5: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
4: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
5: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
4: खूब समझ रहा हूं आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
5: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
4: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
5: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत

0: करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
0: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
0: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
4: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर

0: बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
1: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
0: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
1: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉअर में से क्यों निकाला इस कागज को?
1: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
0: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो मंजरी जी, क्या

0: संदेश प्रद कहानी थी।
1: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
0: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है,
0: जी
1: और विशेष रूप से युवाओं और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी।

0: इससे प्रभावित होता है। निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है। कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे
1: बिल्कुल
0: संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली, और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की,
0: हाँ।
1: तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर
0: हाँ।
1: ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
0: जी
1: लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो
0: जी
1: लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए।
0: हाँ
1: और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये
0: जी
1: फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए,
0: जी
1: लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये
0: जी
1: बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें,
0: और
1: है ना।
0: कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे
1: बिल्कुल
0: बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वाह, कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है, उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं
1: लिखे
0: कि क्या
1: ऐसा
0: क्या नुकसान हो
1: नुकसान
0: सकते हैं
1: दे,
0: उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे। अगर वो देखते हैं
1: बिल्कुल
0: तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना
1: दिखाते हैं।
0: लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है,
1: बिल्कुल, और
0: तो इस
1: नेहा
0: किरदार में आपको क्यों ढलना है।
1: क्यों ढलना है, और
0: जी
1: नेहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो
0: जी
1: उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप
0: जी
1: अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब
0: हाँ
1: घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है, किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने
0: जी
1: अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा

0: जाता है। फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी के संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
1: बिल्कुल
0: उसको आप उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा।
1: बिल्कुल
0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो
1: बिल्कुल
0: एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल
1: बिल्कुल
0: तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए, तो
1: हाँ
0: वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा
1: छोड़े रहना
0: मुश्किल है, तो
1: मुश्किल
0: वहां
1: है
0: संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी
0: जी
1: बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है कथा सुधा, एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना
0: बिल्कुल,
1: ही दी
0: तो ये सब
1: है
0: तो हमने
1: ना।
0: सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना?
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदत और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं
0: बिल्कुल
1: हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं, एक खास
0: बिल्कुल
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सफल
0: है।
1: है।
0: और दोनों को
1: जी
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी मेरी नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो होने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल

0: वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना, थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
1: पूरे
0: रहना है,
1: समय रहना
0: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो
1: जी
0: कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: दे
0: उन
1: दिए
0: पर,
1: जाए तो वो घबरा
0: तो वो एक
1: जाते हैं।
0: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक
1: बिल्कुल,
0: मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी
0: हाँ
1: लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
0: जी
1: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
0: जी
1: पे
0: जी
1: खरी
0: जी जी
1: उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
0: जी
1: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नेहा
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी,
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है,
1: जी
0: तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह को अच्छी
0: है
1: तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो, विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे, लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे, और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे। और जो

0: भरने की सामग्री उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली आधा कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल, और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना।
1: हाँ
0: और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको
1: हाँ
0: नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ना ये क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर इसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है, फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें, फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए, अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए,
0: हाँ
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को
0: बिल्कुल
1: मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: तो
0: अब
1: बस हम
0: कार्यक्रम
1: चलें,
0: से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
1: जी।
2: एक दूसरी बात ये भी हमारा कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था आईबीएस, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं,
0: जी
1: और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को

0: वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
1: जी जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
1: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है। सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें, तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है, कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
1: जी
0: तो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो, अगर ज़्यादा हो, तो डाइजेशन ईजी हो जाता है। गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो, तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो बहुत
1: जी
0: बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं, तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: पड़े?
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही?
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या? किस तरह की एक्सरसाइज
1: बिल्कुल,
0: करनी
1: जैसे
0: चाहिए?
1: मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइजेज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइजेज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
0: जी
1: ना,
0: जी
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और
0: डेंजरस
1: नुकसान डेंजरस होता है,
0: होता
1: उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।

0: जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने
1: जी
0: कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, खास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल पढ़ सकता है।
1: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसका भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है।
1: हाँ।
0: बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, पेशेंट
1: जी
0: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
1: जी
0: पानी
1: जी
0: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
0: बिल्कुल,
1: ख्याल
0: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो
1: ओके
0: गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
1: जी
0: मेरे स्कूल के टाइम पे,
1: जी
0: और
1: क्या
0: काफी
1: बात
0: सुना
1: है
0: है हमने।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर?
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक

0: रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है. अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप.
1: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या-क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
0: हाँ, तो
1: दीजिए।
0: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है. एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है. जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है. अब
1: जी
0: ये काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं,
1: हाँ
0: 4K मॉनिटर्स हैं. हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है. हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया 1 सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो. ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी. दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं. काफी सेम ही है. जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है.
1: जी
0: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं. हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है. हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया 1 सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो. ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी. दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं. छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है. और फिर लास्ट एक और टेस्ट है, जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है. तो
1: जी
0: उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द इसोफेगस.
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती
0: तो
1: हैं?
0: कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है. कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है. अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं. जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं. ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है. ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है. जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली. तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है.
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल.
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों

0: को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है, और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली हैं, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला, ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है
0: जी
1: कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है,
0: जी जी
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि
0: ओके
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स, माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके
0: जी
1: लिए
0: जी
1: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ
0: कहा
1: तो
0: कि
1: है,
0: जी
1: देर इज सम
0: हाँ
1: कोरिलेशन बिटवीन
0: ओके,
1: डाइट, ई नॉट
0: तो
1: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता
1: हाँ,
0: है, तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना
1: तो
0: चाहिए?
1: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज
0: ओके
1: बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी, तो अगर आपको
0: यस
1: एसिडिटी ऑलरेडी है तो
0: हाँ
1: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल
0: फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
1: हाँ,
0: ये
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है, अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अल्कोहल कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर, तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
0: जी
1: एंड
0: जी
1: अदर ऑर्गन्स, तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
0: जी
1: धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है, तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं, आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए, दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है,

0: हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फिकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखते हैं, इंडिया में कम दिखता है, ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्शुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही, ये होता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: कॉमन है, वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं।
1: जी
0: लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है, अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो
1: जी
0: ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं।
1: जी जी और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ
1: जी
0: नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या
0: तो
1: कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं खा, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि यू वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है, इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा ये तेल अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिंस, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिंस आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, सब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: बिल्कुल, और स्टेरॉइड भी
1: आता है। और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होंगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में।

0: एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, भिंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, अस्कला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, घड़गांव, बरडांड, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, पाकर टोली, ढोड़ा डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोड़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के किंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला तराना हम आपकी नजर करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में ऐतराज फिल्म से। रचना समीर की है और धुन बना

श्रोताओं, अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल स्वर में अभी आपने सुना ऐतराज़ फिल्म का गीत। चित्रपट संगीत के इस सदाबहार सफर का अगला तराना आप तक पहुंचाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी हम आपको दे दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फ़ोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान संबंधी विषयों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें हमारे इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए मित्रों, हमारे नंबर हैं 2665923100026। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप 2 जुलाई और 3 जुलाई को संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच सुन सकते हैं। सूचना यही समाप्त हुई और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा केके की आवाज़ में जन्नत 2 फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं सईद कादरी ने और संगीत से सवारा इस गीत को प्रीतम ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सुरीले सफर का अगला गीत लीजिए पेश है सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में ताल फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत ए आर रहमान का।

Baby, baby, baby.

श्रोताओं, ताल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी हम आपको दे दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पांडे जी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए मित्रों, हमारे नंबर हैं 2665 92 और 3100 26। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर

कस्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई और 3 जुलाई को संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। जानकारी यहीं तक थी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और इस दफे हम आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत। शब्दों के मोती पिरोए हैं महबूब ने और संगीत से सवारा इस गीत को स्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सफर का अंतिम गीत हम आपकी नजर कर रहे हैं जुबीन गर्ग की आवाज में गैंगस्टर फिल्म से। मोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन बनाई है प्रीतम ने। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं सुबीन गर्ग की आवाज में गैंगस्टर फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस अंतिम गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का आज का ये सुरीला सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 5:35 हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत की ओर।

साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है और अपने छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश खेती मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए मानसून केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण और जनजीवन की आधारशिला है। भीषण गर्मी के बाद जब आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली वर्षा की बूंदें धरती को स्पर्श करती है, तब प्रकृति मानो नवजीवन से भर उठती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली से ढके खेत और नदियों का कलकल बहता जल और पक्षियों के मधुर कलरव मन को आनंदित कर देती है। साथियों मानसून किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। समय समय पर पर्याप्त वर्षा होने से धान, मक्का, सोयाबीन, दलहन और तिलहन सहित अनेक खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होती है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है। साथियों हालांकि मानसून का

0: स्वागत करते समय हमें कुछ सावधानियां भी अपनानी चाहिए। जल भराव, बाढ़, बिजली गिरने और जल जनित रोगों से बचाव के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पीने के पानी के लिए इस समय खास करके साफ पानी का उपयोग करें और मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर जारी होने वाले चेतावनियों का पालन करें। साथियों, वर्षा जल का संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम वर्षा जल संचयन को अपनाएं तो तालाबों और जलाशयों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। साथियों, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए तो हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को जल संकट से काफी हद तक बचा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, मानसून केवल वर्षा नहीं बल्कि जीवन, समृद्धि, हरियाली और आशा का संदेश लेकर आती है। आइए इस वर्षा ऋतु का स्वागत, प्रकृति के प्रति सम्मान, जल संरक्षण के संकल्प और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ करें। साथियों, आज की बात में हम बात करने वाले हैं कौशल विकास की, कौशल विकास के महत्व और उनके प्रयासों की। साथियों, आज क्रम होगा मेरा शहर, जिसमें हम सुनेंगे श्रुति और मनीष को, जो हमें बताएंगे इस पूरे माह जून में बिलासपुर भर में क्या क्या खास बातें रही। साथ ही साथियों साथ होगा प्यारे प्यारे गानों का, तो आइए बने रहते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल युवाओं के भविष्य को दिशा देता है बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की मजबूत नींव भी तैयार करता है। वो विषय है साथियों कौशल विकास और कौशल विकास हेतु प्रयास। दोस्तों, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। केवल शैक्षणिक डिग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बदलती तकनीक, आधुनिक उद्योग और रोजगार के लिए नए अवसरों के अनुरूप व्यवहारिक कौशल का होना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि कौशल विकास आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। साथियों, अब बात आती है कौशल विकास क्या है। कौशल विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति की क्षमता, योग्यता और दक्षता को इस प्रकार विकसित करना कि वह किसी कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके तथा स्वरोजगार या रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। इसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल साक्षरता, समय प्रबंधन, टीमवर्क और समस्या के समाधान जैसे गुण शामिल होते हैं। साथियों, आगे हम आपको बताएंगे कौशल विकास का क्या महत्व है, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, अब बात आती है कौशल विकास के महत्व की। साथियों, कौशल विकास से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ती है, इससे बेरोजगारी कम होती है और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलता है और देश के उत्पादकता में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण से स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और पलायन में कमी आती है। आज कृषि, हस्तशिल्प, बांस शिल्प, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। साथियों, भारत में कौशल विकास हेतु प्रयास कई सरकार, शिक्षण संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और कई व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारें केवल विकास को बढ़ावा देने के अलावा कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। इनमें युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र, रोजगार परामर्श तथा कई क्षेत्र में प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने कौशल विकास के नए द्वार खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा विश्लेषण

फैशन और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए युवाओं को समय के साथ नई तकनीकों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रिय युवा साथियों, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल डिग्री पर निर्भर न रहें, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई न कोई कौशल अवश्य सीखें। निरंतर सीखने की आदत विकसित करें, नई तकनीकों को अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कौशल आज के समय में सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला है। जब हमारे युवा कुशल होंगे तब हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से अधिक सशक्त बनेगा। साथियों, बातें तो आपसे होते रहेंगी, समय हो गया है एक प्यारे से गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म कोली नंबर 1 का ये गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है अभिजीत भट्टाचार्य और चंदना दीक्षित ने, बोले हैं समीर के और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कोली नंबर वन का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया था अभिजीत भट्टाचार्य और चंदना दीक्षित ने। बोल थे समीर के और संगीत था आनंद मिलिंद का। साथियों, समय हो गया है आज के क्रम मेरा शहर को सुनने का, जिसमें हम सुनेंगे हमारे युवा साथी मनीष और श्रुति की बातें। वो हमें बताएंगे इस पूरे महीने भर बिलासपुर शहर में क्या क्या खास रहा। तो पेश है साथियों आपके सामने आज का क्रम मेरा शहर।

0: बह रहा है रगों में वो रक्त की उबाल है, एक युवा सशक्त होने की यही तो पहचान है। आओ मिलकर जान बचाएं, ये गौरव की बात है, मिलकर रक्तदान करें हम, ये मानवता की मिसाल है। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस पर आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में, और यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है यहाँ पे आए हुए रक्तदाताओं से। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। आइए करके आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम अभिनव सैनी है, मैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर का छात्र हूँ।
2: मेरा नाम फेखर कौफिक है, मैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर का छात्र हूँ।
3: मेरा नाम देवेंद्र सेन है, मैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर का छात्र हूँ।
4: मेरा नाम अनस खान है।
5: मेरा नाम राहुल चौधरी है।
6: मेरा नाम ऋषभ साहू है और मैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर का छात्र हूँ।
7: मेरा नाम आंचल ताम्रकर है, मैं डीपी विप्रा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ।
8: मैं स्वयं सेविका अंजलि ध्रुव पीएनएस महाविद्यालय की छात्रा हूँ।
0: तो आप सभी ने आज ब्लड डोनेट किया है, और आप सभी को कैसा महसूस हो रहा है?
1: ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें जीवन मिला और हम खुद तो जी रहे हैं, और हम रक्तदान करके जरूरतमंदों को उनकी सहायता कर रहे हैं जिनको रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अभी तक 10वां रक्तदान है मेरा, मैं 10 रक्तदान कर चुका हूँ, और मुझे हर रक्तदान के बाद एक अलग खुशी होती है। मैं एक ऐसा इंसान बन रहा हूँ जो दूसरों के काम आ रहा हूँ उनके रक्त से सहायता करके।
0: आप बताएं।
2: हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा भी ये 4th टाइम है, अच्छा लगता है ब्लड डोनेशन करने का।
3: ये मेरा दूसरा रक्तदान है और मुझे अच्छा ही अनुभव हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी रक्तदान करें।
8: ये मेरा फर्स्ट रक्तदान है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी को दे रही हूँ, और मेरे कारण किसी का जान बच सकता है अगर किसी का होगा तो।
7: मेरा भी फर्स्ट टाइम है, आगे भी मैं और कोशिश करूंगी कि दो।
3: ये मेरा फर्स्ट नहीं है, बट अच्छा लग रहा है और एनर्जेटिक भी फील हो रहा है, प्राउड भी लग रहा है।
4: ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है, सबको करना चाहिए।
9: ये मेरा 6वां रक्तदान करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने सीनियर्स के साथ आया हूँ, और साथ में आने के बाद मैं अभिषेक सर से मिला जिन्होंने एक पहल स्टार्ट करी है जो जरूरतमंद लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। इससे हमें काफी अच्छा लगता है कि जो जरूरतमंद एमरजेंसी केसेस में यहाँ के हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उन्हें ब्लड मिल सकता है, और साथ ही हम इस पहल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और आज के इस युग में ऐसे फरिश्ते मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो हम इनका सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि हम आगे इसमें जुड़े और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
0: बहुत सारे दानों में रक्तदान जो है एक महादान के रूप में भी कहा गया है, और हमारे जितने भी युवा जिन्होंने आज पहली बार रक्तदान किया है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: तो आप सभी से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे बिलासपुर के साथियों को? रक्तदान महादान,
1: जीवन का वरदान, आओ मिलकर करें रक्तदान।
0: और जो क्रम है मुझे लगता है कि थमेगा नहीं और बढ़ता जाएगा, और इसी तरह आप मानवता की सेवा करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति, छत्तीसगढ़ी राजभाषा परिषद एवं वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन संरक्षण मंडल बिलासपुर के तत्वाधान में आज तिलक नगर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चलिए आज बातचीत करते हैं हम आए हुए प्रतिभागी। आप अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार, मैं सृष्टि गर्ग।
3: नमस्कार, मैं आस्था तिवारी।
4: नमस्ते, मैं शौर्य भारत।
0: तो सृष्टि, आस्था और शौर्य, आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं आज?
2: आज हम तीनों ही इंडियन क्लासिकल कथक है और आज हम वही परफॉर्म करने वाले हैं, थोड़े से सेमी और बॉलीवुड टच के साथ।
0: तो जिस तरह आज का इवेंट है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आप कैसे सोचती हैं कि हमारा पर्यावरण या फिर हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं?
3: हम पर्यावरण संरक्षण पेड़ लगाएं, थैले का उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जो यहाँ के अध्यक्ष है डॉक्टर विवेक तिवारी, वो विगत 25 वर्षों से यहाँ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें से चित्रकला, फैंसी ड्रेस और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वो 25,000 से ज्यादा वो झोले चुके हैं कि वो प्रमोट करें कि हमें कैसे कपड़े के झोले को उपयोग करके ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहिए।
0: और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा जो अभी हाल ही में हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थों की भी बहुत हमारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे महंगाई भी है, प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, तो ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और कितना जरूरी हो जाता है?
2: पर्यावरण संरक्षण बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी एलपीजी की भी इतनी शॉर्टेज आई थी, तो कई रूरल एरियाज में भी लोग अब गैस छोड़ के वापस लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। तो इससे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि आखिर लौट के तो सब घर को ही आना है, तो हमको पेड़ ज्यादा हो सके बचाएं, नेचुरल रिसोर्सेज जितनी होती है वो सारी बचाएं, क्योंकि आगे हमको वही काम आनी है। जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आजकल चल रहा है उसको तो प्रमोट करना ही चाहिए।
0: हमारे बिलासपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए?
4: मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को जन्मदिन में पेड़ लगाना चाहिए।
3: मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स, ई बाइक्स और साइकिल का उपयोग करें, जिससे पेट्रोल हमारा बचे और पॉल्यूशन भी कम हो, और पेड़ लगाएं, माँ के नाम पेड़ लगाएं, अपने बर्थडे में पेड़ लगाएं।
0: तो आस्था, शौर्य और सृष्टि, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले किसी क्रम में। संगी हो, आगे बढ़त बढ़त हम आ गए हैं। हमार दूसर जो यहाँ प्रतियोगिता हुआ थे, फैंसी ड्रेस के स्पर्धा यहाँ हुआ थे, आप मन के क्या नाम है?
3: अंकित साहू।
0: अंकित साहू, आप मन के?
4: कुंजल साहू।
0: अंकित साहू और कुंजल साहू, आप कहा बने हो आज?
4: मैं एक पेड़ बने हूँ।
0: पेड़ बने हो, और ये पेड़ बन के आप मन का संदेश देत हो?
4: पेड़ मत काटो, ऑक्सीजन नहीं मिले, छाया नहीं मिले, फल भी नहीं मिले।
0: और कितना जरूरी है पेड़ लगाना, और एकर इम्पोर्टेंस भी आप मन बताओ।
4: पेड़ लगाना की छाया मिलता है गर्मी में, जैसे गर्मियों में पेड़ नहीं रहेंगे तो छाव नहीं रहेगा, तो हमको गर्मी बहुत लगेगी।
0: तो जिस तरह आप हमें हरे भरे लिबास में नजर आ रहे हैं, अपने अपने हाथों से फूल और पत्तियां बनाई हुई हैं, और आपका संदेश मुझे लगता है कि सभी लोगों को पहुंचेगा और हम पर्यावरण को और सुरक्षित कर पाएंगे। हमारे लिए बातचीत करके आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया।
4: धन्यवाद।
5: सूखी धरती करे पुकार,
1: वृक्ष लगाकर करो सिंगार।
5: सूखी धरती करे पुकार,
1: वृक्ष लगाकर करो सिंगार।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में और पर्यावरण के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
6: आप सभी को बधाई, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, और मैं शेख आफरीदी, कार्यक्रम अधिकारी NSS DLS राष्ट्रीय सेवा योजना से अपने स्वयं सेवकों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हम संबंधित पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो अस्वच्छता हो या फिर जल संरक्षण हो, प्रकृति संरक्षण हो या फिर वृक्षारोपण हो, ऐसे सभी जो हमने वर्ष भर में जितने भी कार्य किए हैं बिलासपुर के क्षेत्र में, किसी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जगह पर, आज उसी के लिए हमारे सभी स्वयं सेवकों को और हमारी संस्था को सम्मान देने के लिए ही इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहाँ पर मेरे बहुत सारे स्वयं सेवक जो है आज सभी उपस्थित हुए हैं और इसी भावना को लेकर उपस्थित हुए हैं कि पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण जो है वो किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई अभियान नहीं है, बल्कि ये जो है हम सब की व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति। इसीलिए हम सभी यहाँ पर जागृत तौर पर, जो NSS के जो लोग होते हैं वो बहुत ही जागृत होते हैं, जितने भी मेरे स्वयं सेवक हैं वो निस्वार्थ भाव से, इसी भाव से जो है वो काम करते हैं, और यही उनका काम है कि निस्वार्थ रूप से अपने साथ साथ समाज का भी जो है विकास कराना सबसे पहला कार्य तो वही है, और हम सभी प्रकृति से घिरे हुए हैं और प्रकृति का ही जो संरक्षण है वो सबसे आवश्यक है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो हमारा भी कोई जो है वो भविष्य नहीं होगा। यही कार्य करने के लिए हम सभी आज

0: पर उपस्थित हुए।
1: आप सभी युवाओं से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले किसी क्रम में।
2: तो दोस्तों, मैं हूँ श्रुति साहू। सुबह की ताजी हवा, हरियाली का सुंदर वातावरण और एक साथ योगाभ्यास करते लोगों का उत्साह इस पल को और भी खास बना रहा है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन देने की एक अद्भुत कला है। तो अभी मैं हूँ एक योगा मंडली के साथ जो डेली योगा करती है, तो चलिए उनके कुछ कुछ सदस्यों से बातचीत करते हैं। हेलो जी, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम काजल साहू है।
2: हाँ, तो काजल, आप बताइए कि आपको अभी योगा करके कैसा महसूस हो रहा है और डेली योगा करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है?
3: तो दिन की शुरुआत अगर ऐसे हो जाए एकदम शांत वातावरण से तो अच्छा ही लगता है, और सुबह सुबह योगा करने से एकदम माइंड फ्रेश होता है, एकदम अद्भुत शांति का अनुभव होता है और दिन भर तरोताजा महसूस होता है। और ऐसा बोलते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और डेली योगा करने से हमारा शरीर ही नहीं साथ में मन भी स्वस्थ होता है। तो एक मानसिक शांति के लिए योगा बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है।
2: जी, आपने बहुत सही कहा काजल। हेलो जी, आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम अनिल है।
2: तो आप कब से योगा कर रहे हैं?
4: मैं पिछले एक साल से कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ।
2: ओके, तो आप बताइए कि योगा करने से पहले कैसा था और योगा करने के बाद आपको क्या फर्क महसूस होता है?
4: योगा करने से हमारी जो इंटेंसिटी है वो मजबूत होती है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है और काम में स्फूर्ति आती है, और जो हमारी सांसें हैं उसमें नियंत्रण आ जाता है।
2: तो आजकल के युवा पढ़ाई, करियर, मोबाइल, इन सबको लेकर काफी स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके हिसाब से योगा उनकी कैसी मदद कर सकता है, इसके बारे में बताइए कुछ।
4: एक्चुअल में जब डायरेक्शन का सही निर्धारण नहीं हो पाता है और जब आदमी सही दिशा में काम करना चाहता है तो मोबाइल और जो सोशल मीडिया है वो उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो जैसे जैसे आप योगा का सहारा लेंगे, आप प्राणायाम करेंगे नियमित रूप से और जो विभिन्न प्रकार के आसन है, तो आप में फिर चेतना का विकास होता है, कार्य करना चाहते हो उसमें इंटेंसिटी आ जाती है। बेसिकली योगा करते जाएंगे तो आप सही दिशा का निर्धारण हो पाता है। आप किसी काम को पकड़ेंगे तो आप पहले पूरा करेंगे, जो भी आपका जो लक्षित कार्य है आप उसको पूरा कर पाएंगे, और जब जैसे जैसे आप ये पूरा कर पाएंगे तो आप में जो चेतन मन है उसमें वृद्धि होगी और फिर ये डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। और यदि आप मोबाइल भी उसके बाद आप यूज करना चाहें तो आपकी यूटिलिटी मोबाइल के प्रति बढ़ जाती है और आप इस डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो पाते हैं। तो योगा का और योगा के अंतर्गत जैसे कि देखें प्राणायाम आसन है, उसका वही है कि आपके शरीर में नियंत्रण बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आत्मचिंतन की शक्ति का विकास होता है।
2: जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। ठीक है, आपका हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
4: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, चलिए यहाँ हम और भी बात करते हैं। तो हेलो जी, नमस्कार, आपका क्या नाम है?
5: माय नेम इज मिसेस गीता साहू।
2: आप बताइए कि रोज योग करने से आपकी सेहत, मानसिक शांति और दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आए हैं या कैसे पॉजिटिव बदलाव आए हैं?
5: योग हमारे लिए एक अच्छा व्यायाम है। यह हमारे प्रतिदिन तन मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, कई बीमारियों को भी दूर करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे हम आगे अपना जो भी दिनचर्या है वो अच्छे सुचारू रूप से कर सके। हमारे जीवन के लिए बदलाव का काम करता है। योग को बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को अपनाना चाहिए। योग जो है शरीर की नकारात्मकता जो चलती रहती है उसको शांत करने में बहुत बहुत मदद करता है। अब हर किसी को अपने लिए कम से कम 40 मिनट निकालना ही चाहिए।
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर किसी को सिर्फ अपने लिए 40 मिनट टाइम निकाले, और अपने
5: दूसरों के लिए तो हमेशा निकालते हैं सब, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन अपने लिए भी ये 40 मिनट निकालना ही चाहिए।
2: जी बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, अपने लिए टाइम निकाले, पूरा जीवन हमारे लिए फिर खुशहाल बन जाएगा।
5: खुद स्वस्थ रहोगे तो सबको स्वस्थ रख सकोगे।
2: जी, शुक्रिया आपका।
5: धन्यवाद।
2: तो चलिए दोस्तों, हम आगे और भी साथियों से बात करते हैं। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
6: मैं कुशल प्रसाद पांडे, 1974 में नौकरी करना प्रारंभ किया था और 2015 में रिटायर होकर के बिलासपुर शताब्दी नगर में रहता हूँ, और वर्तमान में अभी सामान्य जीवन व्यतीत किया जा रहा है और किसी प्रकार की अभी कोई परेशानी नहीं है जीवन में।
2: तो आप बताइए कि आप कब से योगा कर रहे हैं?
6: मैं 1972 से कर रहा हूँ। प्राणायाम और योग से मुझको लगाव रहा है और मैंने अपने साथियों के बीच में रह करके खूब अभ्यास किया। आज जीवन में हर प्रकार की

0: अस्वस्थता महसूस होता है, किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता नहीं है।
1: तो आप इतने सालों से योगा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
0: किसी प्रकार का योग या प्राणायाम करने से किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती, शरीर स्वस्थ रहता है और आगे 70-71 साल की उम्र में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी तक नहीं हुआ।
1: कितना अच्छा बात कहा आपने कि इतनी उम्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है योगा अभ्यास करने से ही। तो आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अभी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: योगा से इतना शारीरिक क्षमता बढ़ जाता है, निरोगी क्षमता बढ़ जाता है। मेरा विचार से आज के हर नवयुवक या युवती या बच्चों को ही योग कराने की आदत उनको बचपन से डालना चाहिए, क्योंकि अगर आदत बन जाता है तो जीवन का एक अंग बन जाता है। इसलिए योगा करके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में भरपूर जीने का आनंद उठाइए। यही मेरा आज के युवक और युवतियों को संदेश है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बचपन से हम आदत डालें तो आगे हमारे जीवन में वो फॉलो अप ही रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद बेटा।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आज का क्रम मेरा शहर। इस क्रम में हम सुन रहे थे अपने युवा साथी मनीष सिंह सलाम और श्रुति साहू को, जो हमें बता रही थी इस पूरे महीने भर बिलासपुर शहर में क्या क्या खास रहा और उनकी कुछ बातचीत। तो साथियों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। घड़ी की सुइयां आपसे विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। आपको आज का यह कार्यक्रम युवा जगत कैसा लगा? आकाशवाणी बिलासपुर को आप पत्र लिख सकते हैं साथियों। इसके अलावा आपके पास ईमेल करने के भी विकल्प मौजूद हैं। तो साथियों, पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। श्रोताओं, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे एक विशेष भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा मादक पदार्थों से कैसे बचें। इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव और भेंटकर्ता होंगे नेमीचंद साहू। आज संध्या 6:20 और 7 बजे आप आनंद लेंगे ईमेल करें कि सुने कार्यक्रम का, और रात्रि 8:20 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके अलावा आज संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा राष्ट्रीय बांस मिशन। आगे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा तसर कोसा कृमि पालन। इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे जांजगीर चांपा जिले के रेशम उद्योग के सहायक संचालक श्री मधुप चंदन, और इनसे बातचीत करेंगे जीतू भैया। ये तो थी आज शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आइए हम आपको कल सुबह और शाम के मुख्य

आकर्षणों के विषय में बतला दें। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। 10 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर का, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। इसके पश्चात कल सुबह 10:30 पर नए तरानों के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर। 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा कल शाम के कार्यक्रमों में कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। श्रोताओं, कल यानी मंगलवार को आप संध्या 6:30 पर, संध्या 7 बजे और फिर 9:15 से खेल के समापन तक आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच द ओवल लंदन में सेमीफाइनल खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके अलावा कल शाम 5:05 पर किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में, इस कार्यक्रम का आप लेंगे आनंद। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, इस विषय से संबंधित चर्चा। आगे इसी कार्यक्रम में क्रम उड़ान में आप लेंगे किसी नए शख्सियत से उनके शून्य से सफर तक की यात्रा का पूरा विवरण। प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: दो नंबर
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका मा आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है। आज कवि

0: हरय ये मौका मा प्रदेश भर मा कतकुन कार्यक्रम करे जावत हे। औ बस्तर के ऐतिहासिक औ विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू। आप समाचार विस्तार ले। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका मा आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत हे। 6 जुलाई तक चलैया ये सप्ताह मा प्रदेश भर मा कतकुन कार्यक्रम कराए जावत हे। आज पहले दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर मा सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होइन। उमनहा छत्तीसगढ़ मा सहकारिता के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे के प्रतिमा मा माला चढ़ा के अपन श्रद्धांजलि दिन। कार्यक्रम मा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद रहिन। उन्हें सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ विलायगढ़ जिला के कतकुन प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मनमा ध्वजारोहण कार्यक्रम कराएगी। सहसपुर समिति मा राखे गए कार्यक्रम मा जन प्रतिनिधि अधिकारी और बड़े संख्या मा किसान मनहा भाग लीन। कार्यक्रम के दौरान समिति के उप नियम के वाचन करके किसान मनला उनकर अधिकारी और सहकारी प्रक्रिया की जानकारी घलो देगी। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत रायपुर मा अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तर सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही, जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होही। उन्हें 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्स मा गोदाम बनाए के काम के भूमि पूजन करही। आज कबीर जयंती हरय ये मौका मा प्रदेश भर मा कतकुन कार्यक्रम करे जावत हे। रायपुर संग्रह दूसर जगह मा घलो आज कबीरहा मनहा रैली निकालिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास के जयंती के मौका मा रायपुर के सोनपैरी मा संत असंग देव के साथ कबीर जयंती महोत्सव मा शामिल होइन। कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हाकिहिन की संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ ले ऊपर उठ के सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण के प्रेरणा देते। ये मौका मा श्री सायहा घोषणा करिन की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अवधि ला अवैया 3 महीना बर बढ़ाए जाही, जेखर ले ज्यादा उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधान के लाभ लेके अपन लंबित बिजली बिल के भुगतान कर सकी। कार्यक्रम मा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहिन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कतकुन डिजिटल पहल के शुरुआत करिन। इमा आरोग्य सेतु के दूसर चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा ला मजबूत करे बर स्वास्थ्य मानक शामिल है। सभा में श्री नड्डा ये पहला सरकार डहा ले हासिल इच्छन बड़े उपलब्धि बताइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति के बारे में निर्देश जारी करिस। बोर्ड कहे है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच ला नवा भाखा नीति के पालन नहीं करे बर पड़े। बोर्ड यहू कहे से कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं मा पढ़त लेका मन ला घलो कक्षा 10वीं पहुंचे के बाद तीसर भाखा मा बोर्ड परीक्षा दे के जरूरत नहीं होही। बोर्ड कहे है कि कक्षा के अनुसार संसाधन सामग्री दे के बेरा मा दिवाए जाही। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर लगैया उपभोक्ता मनला उपराहा बिजली के फायदा मिली। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी हां सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डहर ले तय करेगे बायबैक दर ला लागू करे के प्रक्रिया शुरू कर दे है। मंजूरी मिले के बाद ग्रिड में भेजे गए उपराहा सोलर बिजली के राशि उपभोक्ता मन के अवैया बिजली बिल में क्रेडिट के रूप में मिली। नेट मीटरिंग व्यवस्था ले उपराहा बिजली के हिसाब रखे जाही। छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ की खबर लिए आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लिए हमार वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज अरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल अरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

આજે સમાચાર કોટી પ્રદેશભરમાં આગજનીકી ઘટનાલે બાંચેબર બહુમંજિલા ભવન કોચિંગ સેન્ટર ઔ સંસ્થાનમાં અગ્નિશમન ઔ આપાતકાલીન સેવા કે જાંચલા તેજ કર દેગી હે. એ કડીમાં દુર્ગ જિલ્લામાં અગ્નિશમન ઔ આપાતકાલીન સેવા ઔ SDRF કી ટીમમાં 40 લે જાતા કોચિંગ સંસ્થાન કે નિરીક્ષણ કરીન. એ દોરાન કતકોન કોચિંગ સંસ્થાનમાં અગ્નિશમન યંત્ર અલાર્મ ઔ આપાતકાલીન નિકાસ વ્યવસ્થામાં કમી પાઈ ગઈ હે. જિલ્લા સેનાની નાગેન્દ્ર કુમાર સિંહ બતાયન કે સંબંધિત સંસ્થાન લા કમી લા દૂર કરે બર હફતા ભર કે સમય દેગી હૈ. દેગે બેરામાં સુધાર નહીં હોય માં કોચિંગ સેન્ટર લા સીલ કર દે જાહી. બસ્તર કે ઐતિહાસિક ઔ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ગોંચા મહાપર્વ આજલે દેવ સ્નાન પૂર્ણિમા કે સાથ શરૂ હોવત હે. એ દોરાન જગન્નાથ મંદિર માં ભગવાન જગન્નાથ બલભદ્ર ઔ માતા સુભદ્રા કે વૈદિક વિધિ લે મહાભિષેક હોહી. એકર બાદ અવૈયા 15 દિન તક ભગવાન જગન્નાથ બલભદ્ર ઔ માતા સુભદ્રા કે મંદિર કે કપાટ બંધ કર દે જાહી. सरगुजा जिला के रामगढ़ में आज ले दो दिन के रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गए है. पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल है ये महोत्सव के शुरुआत करें. उद्घाटन के मौका में स्कूली लड़का और स्थानीय कलाकार मन है सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दिन. कार्यक्रम में श्री अग्रवाल है कहीं की रामगढ़ सिर्फ सरगुजा के नहीं फिर पूरा देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हवे. राज्य सरकार है इला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करे बर सरलग प्रयास करत हे. डिजिटल माध्यम के जरिया छत्तीसगढ़ पर्यटन ला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहचान दिवाए पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल डहर ले 26 ले 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फैमिलियराइजेशन टूर के आयोजन करे जावत है. जेमा राज्य के आने आने जिला ले चुने प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनहा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल के भ्रमण कराए जावत है. ए दौरान प्रतिभागी मनहा मैनपाट और सतरेंगा के भ्रमण करत है. रायपुर जिला के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व पुलिस और नगर निगम के अमला में कार्रवाई करत लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि में बने 77 ठन अवैध मकान ला हटाएगी. अधिकारी मन बताएं कि ये सरकारी जमीन में बहुत बिराले अवैध कब्जा रहीस. प्रशासन डहरले सबो कब्जाधारी मन ला नोटिस जारी करेगी रहीस. कार्रवाई के बाद सबो कब्जाधारी मन के व्यवस्थापन जिला प्रशासन डहरले नवा रायपुर के सेक्टर 30 के आवास में करे जावत थे. अब पेश है मौसम के हाल. मौसम विभाग अवैया 2 दिन तक बस्तर संभाग में एक दो जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए की चेतावनी दे है. अवैया 24 घंटा के दौरान सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा बस्तर और नारायणपुर जिला में गरज चमक के संग वर्षा होए की संभावना है. वही कुछ एक जगह में आकाशीय बिजली गिरे की चेतावनी देगी हवे. मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हाँ आकाशवाणी समाचार ला बताए कि अवैया 6 दिन तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ी हुए उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बने वर्षा होए के आसार है. ये बीच कबीरधाम जिला के बरकोही बांध तीर आकाशीय बिजली गिरे ले एक जन किसान के मौत हो गई. वर्षा ले माचे पर उहा पेड़ के नीचे खड़े हो गए रहीस. अब थुरकुन समाचार सार मा. बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना मा सोवत खानी सांप काटे ले एक जन नोनी औसियान माई लोगिन के मौत हो गए. कोरबा जिला के कटघोरा वन मंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमला ले एक जन ग्रामीण के मौत हो गई. और मुंगेली जिला में जरहा गांव पुलिस हा ऑपरेशन बाज के तहत गांजा के अवैध खेती करे के मामला में एक जन आरोपी ला गिरफ्तार करे है. पुलिस हा आरोपी के कब्जा ले लगभग 3.5 किलो वजन के गांजा के 3 ठन पौधा घलो जब्त करे है. आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्चर पूरा होए के मौका में आज ले सहकारिता सप्ताह मनाए जावत है. आज कबीर जयंती है रे मौका में प्रदेश भर में कतकोन कार्यक्रम करे जावत है. और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गोंचा महापर्व आज ले देव स्नान पूर्णिमा के संग शुरू. एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है. जय जोहार.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी

श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, जाबाज फिल्म से कंचन की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों ने अपनी पसंद लिख भेजी है उनके नाम है हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, मंडी डब्वाली से राजेंद्र अंजू, मोहित तानिया नारंग, दुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत फरवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान धर्मेंद्र, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाबख्श, राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा स्वाति, ख्याति कुमारी, बुलडाणा से अमोल शोभा दीपाली, श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश लिख भेजा है। भाटापारा से एक मेल आया है, बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी का। रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश संध्या, कीर्ति डिकेश, वासु डॉली, पूर्वेश, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निर्मला, विशाल पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, रायपुर से नीलू मेक, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, यवतमाल से जयराम, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर जाबाज फिल्म का ये गीत कंचन की आवाज में।

0: जब बात हो परिवार की सेहत स्वाद और भरोसे की तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
1: श्रोताओं ईमेल करें गीत सुनिए। इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में जानम समझा करो। जी हाँ, इस फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और अनु मलिक का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं महाराष्ट्र से रुपेश महेश प्रज्ञेश प्रीतेश, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल चेतन रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता लोखंडे, महाराष्ट्र से सोपान वसंतराव और निवृत्ति, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, धरदी सरगांव से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनित कृष्टि पटवा, पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अड़ोड़ा, अडार नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश, पैठन से सुरेश जाधव अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकम्मा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश और मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक अलौकिक और राजगढ़ से गोविंद

वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से राम, यवतमाल से पंजाब रामटके, यशोधरा और श्रव्या रामटके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी, हेजल, राजेश रेशमा साहू, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, राजनंदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या, राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से हमारे साथी हैं जिन्होंने इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है ईमेल के जरिए, अशोक कुमार दले, सविता अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश जीविका दले। इन सब की पसंद पर लीजिए पेश है जानम समझा करो, इस फिल्म का गीत।

कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, राजनंदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या, राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल पूजा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से हमारे साथी हैं जिन्होंने इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है ईमेल के जरिए, अशोक कुमार दले, सविता अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश जीविका दले। इन सब की पसंद पर लीजिए पेश है जानम समझा करो, इस फिल्म का गीत।

फरमाइश हम तक पहुंची है, उनके नाम हैं तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, सौरभ शाइना और मैंडी शर्मा, दूल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु, प्रिया, भार, माधुरी, किरण, हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम, सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदी लहरे, हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, नागपुर से वैशाली, शैलेश, टुकटुक, प्रिंस, एकांश, सुमित, वनी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत और मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, तिलहारा से प्रकाश, नर्मदा, सुजाता, मुंगवाल से भारत राम पटौडी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पटौडी, करनाल से सुधीर, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा और स्प्रीत शर्मा, कालेगांव से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा अजीम, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर, कचरी बाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, अकोला से रमेश, धनंजय, दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा, मालोट से राजेश, रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और इनके बहुत सारे साथी, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और इनके साथी, रायगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है फूल और कांटे फिल्म का ये गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। रचना रवि मलिक की है और ईमेल के जरिए जिन साथियों की

अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में। अभी आप सुन रहे थे फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। इस अंतिम गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने इस सफ़र का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इसके दूसरे भाग को आप सुन पाएंगे संध्या 7 बजे। संध्या के 6:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से

0: प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
5: बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए, तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे। और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं।
4: आज कबीर जयंती है, इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी आज कबीर पंथ के लोगों ने रैलियां निकाली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत ने कहा कि संत कबीर ने सत्य, समरसता, मानव सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया वो आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक है। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीरदास के आदर्श जाति पंथ से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव, आत्मचिंतन और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आज से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पंडित वामनराव बलिराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा और उपाध्यक्ष अभिनेश कश्यप मौजूद थे। वहीं सहकारिता सप्ताह के तहत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ध्वजारोहण कार्य

0: कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के विद्यार्थियों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। कोरबा जिले में कोयला खदानों से निकलने वाले पानी का उपयोग अब पेयजल के लिए किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल नीर परियोजना के तहत खदानों के माइन वाटर को शुद्ध कर बोतलबंद पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 46 खदानों में लगभग 1,280 लाख घन मीटर माइन वाटर उपलब्ध है। अब इस जल को अत्याधुनिक आरओ और जल शोधन तकनीक से शुद्ध कर कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। योजना के तहत 20 लीटर की बोतल मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया की 4 प्रमुख कंपनियों बीसीसीएल, सीसीएल, एसीसीएल और एमसीएल में माइन वाटर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तय बायबैक दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने के बाद ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में मिलेगी। नेट मीटरिंग व्यवस्था से अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा। बस्तर गोंचा महापर्व आज जगदलपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र का पंचामृत, चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से परंपरानुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान का अंसर काल शुरू हो गया जो 14 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 25 जुलाई को एकादशी के साथ बस्तर गोंचा पर्व संपन्न होगा। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव शुरू हो गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग सेंटरों और संस्थानों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा SDRF की टीम ने 40 से अधिक कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, अलार्म और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर अनियमितता और कमियां पाई गई हैं। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया जाएगा। रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड के ग्राम सम्मानपुर नकटी में आज राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बने 77 अवैध मकानों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि इस शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के बाद सभी कब्जाधारियों का व्यवस्थापन जिला प्रशासन द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित

0: आवासों में किया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा 26 से 30 जून तक इन्फ्लुएंसर मीट और फैमिलराइजेशन टूर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागी मैनपाट और सतरेंगा का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले छह दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा गहना में सर्पदंश से एक बालिका और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के धवलपुर जंगल में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। और मुंगेली जिले में जरहा गांव पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत गांजे की अवैध खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। कबीर जयंती के मौके पर सोनपैरी में आयोजित महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कोयला खदानों से निकलने वाले पानी को कोल इंडिया अब कोल नीर ब्रांड नाम से बाजार में बेचेगा। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, अभी आप प्रादेशिक समाचार का, माफ कीजिएगा श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में लीजिए पेश है सुखविंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में दीवाने फिल्म का गीत। समीर की रचना है और संजीव दर्शन का संगीत है। ईमेल के जरिए जिन श्रोताओं की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबई, राधिका, अनिष्का, तन्मय और मजनू। कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा। सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, खियांश कुमार चंदन। पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन और प्रांजल। मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल

कुलगांव से पांडुचंदन उषा प्रतीक्षा, जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्व हिमाक्ष, कांवड़ कवड़ा से पांडर कवड़ा से अनिल उषा अनुश्री धनश्री, बठिंडा पंजाब से परमेन सिंह मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिम्मू एकम दमन अभिजोत, तीवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मनकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सौद्रीबाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई चंद्रपाल मरावी लक्ष्मी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन, महाराष्ट्र से संतोष सुनैना सुकन्या सविता, सीतामणि से मसरत जहानास तलहत फरहत रिफत नुजहत शाजिया शाहीन नाज नाजिया नूरी नाज, और तेलंगाना से मोहम्मद बुराहुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश नीलम्बत्रा, जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका गव्या सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज पीयूष कुमार रोहित राज, पंजाब से हरजिंदर जसवीर सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है दीवाने फिल्म का ये गीत।

0: हल्दी वा इंडिया।
1: हल्दी वा का सम्मान है
0: शुद्ध शहद एटो बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दी वा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दी वा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए
1: हल्दी वा इंडिया।
0: अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दी वा इंडिया।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है उदित नारायण अभिजीत की आवाज में इश्क फिल्म का गीत। देव कोहली की रचना है और अनु मलिक का है संगीत। पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशि कांता प्रजापति। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, कमल, साहनी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभादेवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश, आशु, सोनाली। बरेली कैंट चनहेटी से विनेश कुमार, रागिनी, मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह, बैकरा, घुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमीदुन, जीशान, शहनवाज अहमद सिद्दकी। नैला से प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु। बिलासपुर से छन्नूलाल शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता शिवास, रजन साहू, हेमंत, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम, सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश, किरण, लाव्या, आरव, खुराना, एस के पप्पी। महाराष्ट्र से विजय, रतन, ओम कुमार। करजत मुंबई से अहमद भाई, फूलवाले, दुखनी, सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले। दिल्ली से प्रमीला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। राजकोट से रेणु, श्रीजा और इनके बहुत सारे साथी। गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति। सहारनपुर से सैयद मशहूर, साइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल, जगदीश। भिलाई नगर से अशोक, प्रमिला, आसमा। लुथरा कमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज। कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, ललिमा, खुशांत, निशांत। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद, मरिफा नवाज, चाहत। पलारी से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन। लुथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श, आतिका, डोंडी, लोहारा। बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, अल कबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बाग बहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल शेन। दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई अंसारी। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सानी, अफजल। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, नंदा, हनुमान। और टीकमगढ़ से बजेंद्र, विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू। लक्सर हरिद्वार से ताज, मोहम्मद अंसारी।

गुलाम साबिर राही मेरा जहां। पंजाब से गगनदीप तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका वाणी। मुंबई से अदीबा नाज फातिमा नसरीन अंसारी आलिया और सवा अंसारी। मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा सुलोचना चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार। पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी अन्ना पूर्णा वर्मा। कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अभिजीत की आवाज़ में इश्क फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और 11:30 से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665923100026। इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप 2 जुलाई और 3 जुलाई को संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच सुन सकते हैं। सूचना यहीं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के इस वक्त 7:20 होने को हैं। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जमो किसान भाई बहनी मिल्ला वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम जय जोहार संगवारी हो। आवाज देखो आज बहुत ही हंसी खुशी के बात है। आज पूरा विश्व मां कह जाए तो संत शिरोमणि हमार कबीरदास जी महाराज जी के आज प्राकट उत्सव जिला जन्मोत्सव कह जाए मनाया जात हवे। तो आप मल्ला सब झनला साहेब बंदगी बंदगी साहेब। तो संगवारी हो गोट बात तो आप मन से हम करत हन और आज हमन कबीरदास जी के बारे में भी गोट बात करबो। उखर पहली हमन ये जिन संदेश से उमल्ला सुन लेथन।
1: समय पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हर घर की पहचान है
4: हल्दीवा इंडिया।
3: हल्दीवा का सम्मान है
4: शुद्ध शहद एटो बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए
3: हल्दीवा इंडिया।
4: अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दीवा इंडिया।
0: किसान भाई हो देखो खेती किसानी के बेरा आ गए है ना। अब किसान जिन है बिल्कुल तैयार है बोनी करे पर और खेती के जिन बूता है लगभग बिल्कुल कई जन किसान तो लगे गए है कह जाए पानी लागोरत है किसान भाई मन। तो अभी जिन समय होते वह आनी बानी के फसल के उत्पादन पर घलो होते किसान भाइयों। अब जैसन कि आज हम गोट बात करा था आप मन से

राष्ट्रीय बांस मिशन। तो किसान भाइयों, राष्ट्रीय बांस मिशन किसान मन पर बहुत ही बढ़िया आय बढ़ाए के सुनहरा अवसर आए संगवारी हो। ओखरे नावले के का हमन बढ़िया सुनहरा सोना के नाम घलो दिए है का। आज हमन बात करबो जिन भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना जिला राष्ट्रीय बांस मिशन के योजना कहे जाते। बांस ला हरियर सोना तो बताए ना आप मन ला काबर कहे जाते। तो एकर सिर्फ जंगल के उपज ही नहीं बल्कि किसान मन बर आमदनी रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के एक बढ़िया साधन है किसान भाई हो। भारत सरकार ह बांस के खेती और ओखर प्रसंस्करण और विपणन ला बढ़ावा दे बर राष्ट्रीय बांस मिशन चलाते हैं। संगे हो राष्ट्रीय बांस मिशन के मुख्य उद्देश्य बांस के खेती के रकबा बढ़ाना है, उच्च गुणवत्ता वाले जिन पौधा है ओला उपलब्ध कराना है, किसान मन के आय बढ़ाना है और बांस आधारित कई ठन उद्योग है उमल्ला प्रोत्साहित करना है योजना के माध्यम ले। काबर ये जिन योजना होते क्रमबद्ध होते आगू बढ़ाए बर होते। किसान मन ला बांस के पौधरोपण नर्सरी की स्थापना भी बर सहायता देता है। ओखर संगे संग प्रसंस्करण इकाई और बाजार सुविधा बर सहायता प्रदान करे जाते किसान भाई हो। बांस एक ऐसन फसल आय जौन हा कम लागत मा तैयार हो जाते और एक बार लगाए के बाद कई बच्छर तक के उत्पादन देवत रहते किसान भाई हो। बांस के उपयोग पर निर्माण जैसन के बांस के कई प्रकार ले आप मन देखा तो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक के बांस के प्रयोग हमन करथन। अब जैसन की दाई दीदी मन बिहन्या उठे तो गली खोल खरहार थे तो काखर बने थे बांस के खरहट्टा है ना, खरहारा जैला के धन। और आज के समय में खर आनी बानी के फर्नीचर आप मन देखा तो जैला हमन हस्तशिल्पी के थन। तो बड़े बड़े जिन मनखे है लोगन है उखर घर ये जिन हस्त शिल्पी बांस के बने रही थे बेत के कहे जाए फर्नीचर आप मन देखा तो हा, टी टेबल देखा तो हा, है ना, गद्दा लगा के बैठन रही थे, झूला देखा तो हा। तो ये बांस के बड़ा बड़ा अच्छा उपयोग है। पहली किसान मन एखन ले घर बनावा छांदी बनावा है ना, ओरिया और फैका घलो बनावा राचर बनावा। तो बांस कैसन शुरुआत से ही मानव जीवन मन के बहुत ही उपयोग करते थे, लेकिन मन के खिलौना और सबसे बड़ी ये है जिन कृष्ण कन्हैया हैं ओखर बांसुरी भी है बांस के बने हैं और बांस के बांसुरी में अतका जादू है पूरा विश्व लापन और आकर्षित करते। तो बताओ ये बांस के एक धुन जब निकल जाते तो का मनखे का पशु का जीव जंतु जमो हाँ उड़ा के उखर तीर में आ जात रही से। तो ऐसा नो बांस के बंसी में जादू है। तो काहे नहीं हम बांस के आज प्रयोग करत हन अगरबत्ती बनाए में, अगरबत्ती जेन है लपेट के उखर से अगरबत्ती भी बनाया जाते। कागज उद्योग में है जय ऊर्जा आउ सजावटी सामग्री भी बनाया जाता हुआ जेखर ले गृह उद्योग और दीदी मन जेन है अपन समूह बना के ये सजावटी बना के आप मन बड़े बड़े बाजार में गाँव में शहर में चारों तरफ आज एकर बिक्री बाढ़ गया है। तो आवाओ हम सब मिलके ये जिन राष्ट्रीय बांस मिशन है उला पूरा करी और अपन जिन किसान मन के आमदनी है वह यही प्रकार ले हम उमा काम करबो तो हमर सबके जीवन में सुनहरा अने जिन सोना है हरियर जिन सोना है। और उद्यानिकी विभाग के जिन कृषि कार्यालय एकर बर कृषि कार्यालय संपर्क कर सकत हन। तो ये तो आज गोट बात करें हमन आप मन से बढ़िया राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं आज के जिन हम जयंती मनाते हवन है ना, आज के दिन बात करबो तो देखो बढ़िया सब घर में खुशी खुशी है, दिया बाती सब जलात हवे और पूजा पाठ करत हवे। गुरु महाराज कहे जाए तो जिन हमला मार्गदर्शन दी से उखर नाम है अनेक कबीर दास। और इखर आज ही के दिन पूर्णिमा के दिन इखर जिन प्राकट्य कहे जाए प्रकट ईमन हो रही सब। तो अही दिन ला कबीर जयंती के दिवस के रूप में हम सब पूरा विश्व मनाथन संगवारी हो। कबीर दास जी के दोहा भजन सत्संग और समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित हुआ था। हमारे देश के महान संत कवि और समाज सुधारक रहीन हवे ओमन अपन पूरा जीवन समाज में

है ना, ये सब ला बाहरी आडंबर के उमन विरोध करिन, समाज सुधार करिन। कबीर दास जी मन के कहना रही से कि भगवान ला पाए बर मन के मन मा पवित्रता, प्रेम और सच्चाई ये सबले ज्यादा जरूरी है, न कि दिखावा। जैसन कि उमन लिखे रही है, लिखे हवा है, उनका दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। एक ठाऊ सुरता देवादे थन आप मल्ला, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। ये देखो, ये दोनों जिन दोहल अगर अपन जीवन में उतार नहीं तो बिल्कुल आपके जीवन बढ़िया सफल हो जाए। किसान भाई बहनी हो, संत कबीर दास जी के जन्मोत्सव के एक पिताऊ आपला हम गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हन, साहेब बंदगी करत हन। मेहनत, ईमानदारी, सादगी और परस्पर सहयोग के भावना ले खेती किसानी और समाज दोनों में खुशहाली आ सकत है। तो काहे नहीं आज चलो सब सुन लेथन मिलजुल के एक ठो गीत, जनक राम साहू राम प्यारे साहू के स्वर में कहे है कबीरा भजन, है कबीर भजन।

0: तो देखो कतेक सुघर बढ़िया भजन रही से कहे हे कबीरा, जनक राम साहू राम प्यारी साहू के स्वर में सुने ये कबीर भजन। अब आप मन ले चलत हन आज की गोट बात भेंट वार्ता तरफ। तसर कोशा कृमि पालन आज की विषय है और एकर बारे में बढ़िया मधुप चंदन सहायक संचालक रेशम जांजगीर चांपा के मन बतात हवे और गोट बात ला चालू करते हमारे जीतू भैया। तो दोनों के बीच होए गोट बात ला सुनीन और का हमार लाभ के बात बतात हवे आओ सुन लेथन।
1: किसान भाई हो राम राम जय जोहार। जैसन आप मन बर हम हमेशा आनी बानी के सुघर समसामयिक विषय लेके आथन। आज के हमर विषय ऐसन है सुघर विषय है तसर

0: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। जैसन आप मन बर हम हमेशा आनी बानी के सुघर समसामयिक विषय लेके आथन। आज के हमर विषय ऐसन है, सुघर विषय है तसर कोसा कृमि पालन। और ए विषय ऊपर सुघर जानकारी दिए बर हमर बीच फोन लाइन से जुड़त है श्री मधुप चंदन जी मन। इमने सहायक संचालक रेशम जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ ले। तो सबले पहली कार्यक्रम में एकर स्वागत कर लेथन। आपके हमर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप मल्ला राम राम, जय जोहार।
1: जी राम राम, नमस्कार जम्मू संगवारी मल्ला।
0: तो जैसे आज के हमर विषय है तसर कोसा कृमि पालन। सबले पहली हमला हमर पुराना हमर किसान भाई मन जानते हैं जिन ये व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, नवा कतको जी किसान मन जुड़ते हैं हमर कार्यक्रम से। तो सबले पहले यही बतावा कि रेशम कोसा का होते बतावा।
1: सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, रेशम या सिल्क एक प्रकार का ऐसा प्राकृतिक रेशा होता है जिसे रेशम कीट द्वारा प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के उपरांत बनाया जाता है। प्रकृति के द्वारा दिए इस अद्भुत उपहार का उपयोग हम पवित्र, मुलायम, चमकीला, विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जी, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को ही हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो रेशम बेसिकली चार प्रकार का होता है, इसमें ईरी, मूगा, मलबरी और टसर रेशम है ना, ये चार प्रकार के रेशम होते हैं। और हम सभी भारतीयों के लिए यह मतलब गर्व की बात है कि हर देश है इसमें सभी चारों प्रकार का रेशम की खेती यहाँ उसमें की जाती है, है ना। वैश्विक रूप में यदि हम देखें तो कुल रेशम उत्पादन में भारत चाइना के बाद दूसरे पायदान में है। हमारा जो प्रदेश छत्तीसगढ़ है इसमें मुख्यतः दो प्रकार का हम रेशम उत्पादन यहाँ करते हैं, जिसमें पहला है अपना टसर रेशम कोसा उत्पादन, बहुलता के साथ किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कोसा उत्पादन करने वाला राज्य है। और मलबरी रेशम की खेती भी यहाँ किया जाता है छत्तीसगढ़ में, इसका उत्पादन भी हमारे प्रदेश में किया जा रहा है, पर इसका मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जगह इसका उत्पादन बहुतायत में करते हैं। और तीसरा प्रकार होता है एरी रेशम, जो कि अरंडी इसका मुख्य पौधा होता है, अरंडी का पौधा, उस पे इसकी खेती करते हैं, जो मुख्यतः हिमालयन क्षेत्र में बहुतायत में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसका एरी का जो रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, परंतु अभी थोड़ा प्रचलित नहीं है यहाँ, इसलिए अभी इसका खेती उतना नहीं कर रहे हैं। और एक चौथा प्रकार होता है मूगा सिल्क, इसकी खेती मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट जैसे असम वगैरह में करते हैं। ये चार प्रकार के अपने रेशम होते हैं।
0: एक थी सवाल मुरमन माथे की भाई, छत्तीसगढ़ में का कारण है, कैसन जलवायु है जेकर कारण टसर कोसा के हमन खेती करथन?
1: जी, जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल जलवायु है यहाँ का। तो इस वजह से यहाँ टसर कोसा क्या है कि जंगलों में नैसर्गिक रूप से पाला जाता है ना। अच्छा। और इसके लिए ये जो मौसम है बहुत अनुकूल मौसम है, जिसमें इसकी वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छा आता है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो कुल मिला के टसर कोसा के छत्तीसगढ़ हमर हब है कई देवाओ, खासकर हमारे कोरबा क्षेत्र के बात करी,
1: जांजगीर और जसपुर, सरगुजा। हाँ। और ये अपन बस्तर वाला जो बेल्ट है सभी इधर बहुतायत, यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया जो है और जो हमारे कोसा सेंटर है जहाँ अर्जुन साजा, सेन्हा साजा, धावड़ा, बेर का जहाँ वृक्ष होता है। हाँ। ऐसे जगहों में इसका बहुतायत से खेती करते हैं।
0: तो हमन लही बतावे कि टसर कोसा कृमि पालन या एकर खेती कौन ढंग से करे जाते है और कैसे करे, बढ़िया ढंग से बतावा।
1: टसर कोसा कृमि पालन मुख्य रूप से ऐसे वन्य क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड है या अपना ऐसा स्थान है जहाँ अपना अर्जुन का पौधा हो गया, अर्जुन साजा, सेन्हा वृक्ष, धावड़ा वृक्ष होता है, बेर का वृक्ष है ना, ऐसे आदि इस टाइप के जो जंगल है वहाँ मतलब टसर कीट जिसका वैज्ञानिक नाम एंथ्रिया माइलेटा है ना, कि बीज को उसको अंडा रहता है, कीट का अंडा है, उसको लेकर खाद्य पौधे जो हैं, ये जो सभी जो बताया आपको खाद्य पौधे हैं उनके ऊपर इनको डाला जाता है। टसर कीट इन खाद्य पौधों के पत्तियों को खाकर लगभग एक से डेढ़ महीना में बड़ी होकर वो कोसा फल का निर्माण कर देता है। इसका खेती साल में तीन बार होती है, प्रथम फसल जून जुलाई के माह में करते हैं जो कि सबसे कम समय का होता है, 30 दिनों में, मतलब वो अंडा से लेके पूरा वो कोसा बना लेता है, वो 30 अच्छा। दिन में उसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। प्रथम फसल में जी, और द्वितीय फसल होता है अगस्त से सितंबर माह में, लगभग 45

0: दिन में वो इस प्रकार से कोसा बना लेता है, अंडा से कोसा, है ना। और तीसरा फसल होता है जो अक्टूबर नवंबर माह में होता है, लगभग 60 दिनों में अपना पूरा जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार वर्ष 3 बार कोसा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं जून महीने से दिसंबर माह तक ये कृमि पालन का कार्य करते हैं और 3 फसल में किसान आमदनी इसमें कमा लेते हैं। तो अगर विस्तार से अगर हम इसका जीवन चक्र को समझे तो ये कीड़े में 4 अवस्थाएं होते हैं। जैसे 4 अवस्था में पहला अवस्था अपना अंडा अवस्था होता है, इसमें अंडा अवस्था के बाद फिर अंडा 7 से 8 दिन में हैचिंग होता है, मतलब प्रस्फुटन होता है उसका, है
1: अपन मन भी
0: ना
1: हो जाते हैं।
0: वो। हाँ, ऐसा है कि हमारा जो बीजागार सेंटर रहते हैं, किसान भाई लोग हमारे कोसा बीजागार सेंटर से, है ना, अंडा लेके जाते हैं, डीएफएल्स वगैरह जिसको हम डीएफएल बोलते हैं, अंडा को भी डीएफएल बोला जाता है, मतलब डिजीज फ्री लेइंग, है ना। एक मादा तितली मतलब एक बार में जितना लगभग 150 से 200 अंडा देती है एक बार में तितली, तो उसी को ही एक डीएफएल कहा जाता है। ये जैसे ही 8 दिनों बाद उस अंडे से, है ना, ऑटोमेटिक वो फूट के निकलेगा इल्ली, छोटा छोटा चींटी के समान रहेगा, है ना। वो लगभग 3 दिन तक वैसा फुटान होते रहता है वो, जो अंडे हम किसान भाइयों को देते हैं उनको, तो 3 दिनों तक जी अंडा फूटते रहते हैं। और उसके बाद वो किसान भाई वो सब जो अंडा रहता है, लार्वा रहता है, उसको गुलमोहर का या छीन का पत्ती में अपन उसको खाद्य पौधों पे चढ़ाते हैं उसके माध्यम से।
1: ठीक,
0: जैसे ही वो तितली फूटता है तो पहले वो छीन की पत्तियों पे चला जाता है और वो छीन की पत्तियां या गुलमोहर की पत्तियों को किसान भाई उठा के उसको सीधे जो अपना टसर का जो खाद्य पौधा है, साल, साजा, अर्जुन जो भी है, उसमें उन लोग डालते हैं। इस प्रक्रिया को ब्रशिंग बोला जाता है। तो हम किसान भाइयों को ये विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, जैसे ब्रशिंग करने से पहले क्या है कि चाकी बगान बनाना जरूरी है, चाकी बगान बनाना है। चाकी बगान अर्थात ऐसे बगान होते हैं जिसमें छोटे जो कीड़े रहते हैं, जब अंडा हम देते हैं किसानों को, जो छोटे इल्लियां जो रहती है, तो छोटी इल्लियां क्या है, सॉफ्ट पत्ते खाते हैं, कोमल पत्तियां, कोमल पत्तियां खाती है, तो उनके लिए चाकी बगान बनाना पड़ता है। चाकी मतलब शिशु, समझिए जापानी शब्द है चाकी। शिशु अवस्था में जो कीड़े का पालन करते हैं तो उसको चाकी बगान बोला जाता है। चाकी बगान बनाते हैं और नीचे पूरा साफ सफाई किया जाता है, उसके नीचे घास वास ना रहे, जब ब्रशिंग हम करें उससे पहले पूरा सफाई करते हैं, चूना ब्लीचिंग का डस्टिंग करते हैं, उसको निसंक्रमित करके रखते हैं उस जगह को, ताकि उसमें किसी प्रकार की कीट व्याधियां वहां पास उपस्थित ना रहे, है ना। और इस प्रकार फिर उसके बाद हम ब्रशिंग का कार्य करते हुए चाकी कृमि पालन का कार्य प्रारंभ करते हैं। और ये जो इल्लियां जो रहती है छोटी छोटी, शुरू में तो एकदम चींटी के समान रहती है ये इल्लियां, और ये लार्वा जो रह, लगभग 5 अवस्थाएं होती है लार्वों का, है ना, ये सभी पत्तियां खा खा के लगभग 20 से 25 दिन में अपना साइकिल पूरा करके ये कोसा बना लेती है। ये चाकी बगान एक विशेष अवस्था होती है कोसा कृमि पालन, है ना, करने के दौरान। इसमें हम अगर बचा लिए कीटे को तो हमारा उत्पादन में वृद्धि अच्छी रहेगी जी। तो चाकी बगान के लिए हमको फरवरी महीने में ही पौधों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए, जो खाद्य पौधे हैं जो उनकी, और उसमें ग्रोथ हार्मोन जो नई पत्तियां आती है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन हो गया, नैनो यूरिया हो गया, है ना, ये सब का स्प्रे करना चाहिए।
1: ताकि
0: और
1: अभी
0: जैसे
1: बढ़िया नवा पत्ती आ जा रहा है।
0: जी नवा पत्ती उससे फिर आएगा, अच्छा पत्ती आएगा, है ना, कोमल पत्तियां आएगा जिससे कीड़े अच्छा से उसको खाएंगे, उसका भोज्य पदार्थ है वो। और गाल फ्लाई एक बीमारी रहता है पत्तियों में, ज्यादातर आता है इधर छत्तीसगढ़ चौहा साजा में गाल फ्लाई आता है, तो उसका प्रकोप से बचाव के लिए किसान भाइयों को एसिटामिप्रिड और इमिडाक्लोप्रिड, ये दवाई है कीटनाशक या रोगर, इसका स्प्रे करना चाहिए, 0.03% का स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों को, है ना। और ब्रशिंग करते समय ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्रशिंग जब करें तो किसान भाई सुबह या शाम को करें, दोपहर में उनको किसान भाइयों को ब्रशिंग नहीं करना है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज्यादा धूप रहता है और कीट जो है बहुत सॉफ्ट नेचर का रहता है वो, है ना, ज्यादा धूप झेल नहीं पाएगा शुरू में, इसलिए उसको सुबह या शाम को करना है ना। और दूसरी बात यह है कि यदि बारिश अधिक हो रही हो तो उस दौरान, है ना, ब्रशिंग नहीं करना है, या अगर ब्रशिंग करते भी है बारिश थम जाए तो उसके बाद ब्रशिंग करते हैं, तो ब्रशिंग बैग होता है एक, ब्रशिंग बैग का उपयोग किसान भाई जरूर करें। और तीसरा जरूरी चीज है, कृमि पालन करने के दौरान एक मच्छरदानी टाइप से रहता है, काफी बड़ा साइज का रहता है, रेयरिंग नेट बोला जाता है, तो वो रेयरिंग नेट का उपयोग कर सकते।

0: करते हैं उससे लगभग एक रेयरिंग नेट से लगभग 40-50 पौधे ढक जाते हैं, तो 40 पौधे ढक जाते हैं तो उसमें ब्रशिंग अच्छी हो पाती है। तो इसमें जैसे कीट व्याधियां जो है वो नहीं आ पाते बाहर से, जो हमारे जो कीट है कृमि पालन वाले टसर कीट है वो बच जाते हैं। और जी ब्रशिंग से पूर्व अच्छी तरह से मतलब पेड़ पौधों को झड़ा लेना चाहिए ताकि उसमें जैसे चींटियां वगैरह है या अन्य शत्रु कीट है उनसे उन कीट को अपना जो टसर कीट है उसको बचाया जा सके, नुकसान
1: नुकसान नहीं होगा।
0: नहीं होगा। जी जी जी
1: जैसे एक थी मोरे मेरे प्रश्न आते हैं,
0: जी
1: हमन जैसे पेड़ पौधा लगाए हैं जेन जेन मा हमन टसर कृमि पालन कर सकत हन, तो
0: जी
1: जेन कौहा के या पलाश के या जेन जेन भी कुसुम के बताए हैं अपन, वो
0: जी
1: कतका उम्र के या कतका हाइट के पौधा होना चाहिए? का बड़े वृक्ष में ही करे
0: जी
1: जा सकत है कि फिर
0: जी
1: छोटे वृक्ष में ही करे जा सकत?
0: जी करने के लिए तो बड़े वृक्ष हम भी कर सकते हैं, है ना, उसमें भी डाल सकते हैं, पर एक मिनिमम जैसे रहता है 4 साल का पौधा रहे तो उसका थोड़ा ग्रोथ अच्छा आ जा रहता है ना, तो उस पौधे में उसका वो करना है अपने को जी कीट पालन का काम। जी
1: अच्छा, तो
0: जी जी
1: जैसे किसान मन करत है जैसे 1 एकड़ में लगभग कतेक पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कौहा के बात करे हैं अर्जुन के?
0: कौहा अर्जुन के पौधा 1 हेक्टेयर में 4100 पौधा लगते भी है,
1: 1 हेक्टेयर में? अच्छा,
0: 1 हेक्टेयर में। जी,
1: कुल
0: और
1: मिला
0: एक
1: के।
0: हेक्टेयर में मतलब वो एक किसान भाई को हम अगर 200 अंडा भी देते हैं, 200 DFL अगर देते हैं किसान को अंडा, तो 200 DFL में किसान भाई उसमें अगर अच्छे से उत्पादन करता है तो 15 से 20 हजार कोसा ले आता है, लेकिन एक औसतन हम लेके चलते हैं उसमें 10 हजार कोसा तो आराम से लेके आ जाता है किसान। जी,
1: तो किसान मन ला एकर से कतका आमदनी मिल जात हो ही?
0: किसान भाई मान लो एकर से आमदनी ये है, एक किसान भाई जैसे 10 हजार कोसा 200 DFL में उत्पादन करके देता है एक औसतन, तो उत्पादन लगभग उसने 10 हजार लाया, उसका ए ग्रेड का अगर कोसा रहा तो एक कोसा का मूल्य 5 रुपया रहता है, तो
1: अच्छा,
0: उस
1: एक
0: हिसाब से
1: कोकोन
0: 50 हजार रुपया एक ही फसल में वो उसको प्राप्त हो जाएगा।
1: के? अच्छा,
0: इसका शासन द्वारा तय दर है, MSP रेट बना हुआ है, इसका कोसे का वेट के हिसाब से रहता है, ए ग्रेड का कोसा का 5 रुपया है, बी ग्रेड का कोसा है तो उसका 4 रुपया 10 पैसा है, सी ग्रेड का 3 रुपया है और डी ग्रेड का 2 रुपया 10 पैसा है, और मोमरा कोसा है उसका और कम है, 1 रुपया 11 पैसा है ना,
1: अच्छा,
0: इस टाइप से ऐसा शासन द्वारा तय है दर, उसके आधार पे हम उसका सेल वेट के हिसाब से हम कोसा क्रय करते हैं किसानों से, ककून बैंक हमारा है, ककून बैंक के माध्यम से किसानों का कोसा समितियों के माध्यम से क्रय किया जाता है, और उसके बाद फिर या तो किसान भाई अगर उनको बाहर में कोई व्यापारी अगर ज्यादा अधिक मूल्य शासन के जो तय दर है उससे अधिक मूल्य पे कोई व्यापारी उनको उनसे अगर कोसा खरीदना चाहता है तो किसान भाई स्वतंत्र है इसमें कि वो अपना कोसा उन्हें भी दे सकते हैं। जी
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुग्घर जानकारी आप आज रेशम कोसा के ऊपर
0: जी
1: दिए
0: जी
1: था श्री मधु चंदन जी। ग्रामोद्योग
0: जी अब
1: विभाग जैसे आपके विभाग है, वो
0: जी
1: नजर
0: जी
1: ले किसान मन ला कौन कौन से प्रकार के सहायता दिए जाते? वो कति ले किसान मन जैसे कोनो अगर
0: जी
1: व्यवस्था ला करना चाहते है ना शुरुआत से, तो कौन कौन प्रकार के सहायता
0: जी
1: या प्रशिक्षण
0: जी
1: दिए जाते ला बतावा?
0: किसान भाइयों को सबसे पहले हमारे जो विभाग जिला कार्यालय सभी जगह हैं लगभग, तो रेशम विभाग के जो कार्यालय हैं वहां जाके किसान भाई है ना, वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं है ना, या जो वहाँ कार्यरत जो फील्ड अधिकारी वगैरह हैं उनसे संपर्क करके आवेदन वगैरह उनको दे के कृमि पालन वगैरह कार्य में जुड़ने के लिए है ना उनको आवेदन दे सकते हैं, और साथ ही प्रशिक्षण के लिए उनको विभाग प्रशिक्षण भी देगा कृमि पालन का कार्य भी के लिए और धागाकरण के लिए प्रशिक्षण देगा, कृमि पालन कार्य कर रहे ग्राहियों को निःशुल्क विभाग विसंक्रमण सामग्री उपकरण उनके द्वारा मतलब जो कोसा फल भी जो मिलता है उसको भी MSP पे हम लोग तय दर पे उसको क्रय करते हैं, ये सब साथ ही साथ शासकीय जो अपना कोसा बाड़ी रहता है ना, और कोसा बीज केंद्र है उसमें पौध संधारण कार्य संरक्षण कार्य जो भी कार्य रहता है ना उनको किसान भाइयों को रोजगार भी विभाग के द्वारा निरंतर दिया जाता है जी, और साथ ही साथ महिलाएं जो है महिलाओं को भी इस विभाग में है ना धागाकरण और कृमि पालन कार्य में जोड़कर स्व सहायता उन लोग समूह बनाकर उनको स्वरोजगार देते हैं, ये सब हमारे विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
1: अच्छा, कुल मिला के शासन डहर ले व्यवस्था
0: जी
1: हवा है, किसान मन ला आगू आके विभाग से जुड़ना

0: ही अगर ये कोसा उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो आखिर में आप हमारे किसान भाई मन ले बतावे कि कौन कौन सा योजना विभाग द्वारा संचालित होते हैं राज्य सरकार के?
1: विभाग द्वारा मुख्यतः अभी रेशम प्रभाग द्वारा 3 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें पहला है नैसर्गिक रैली कोसा बीज उत्पादन एवं प्रगुणन योजना। इसके अंतर्गत किसान भाई ऐसे जंगल जहां अर्जुन साल साजा के वृक्ष हैं, वहां नैसर्गिक रूप से डाबा कोसा या रैली टसर कोसा का कैंप लगाकर, है ना, टसर कीट का जैव संवर्धन करते हैं नैसर्गिक, और उससे नैसर्गिक रूप से कोसा फल का उत्पादन में वृद्धि करवाते हैं। ये पहला योजना है। दूसरा है टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है हितग्राहियों को स्वच्छ डीम समूह उनको प्रदान करना, अनुदान में स्वरोजगार उनको रोजगार प्रदान करना, शासकीय टसर केंद्रों का संधारण और अनुरक्षण केंद्र कार्य करना, ये सब कार्य है। और तीसरा है रेशम विकास विस्तार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मलबरी जो रेशम केंद्र है उनका संधारण, कृमि पालन कार्य में जुड़े हुए हितग्राहियों को अनुदान एवं सहायता प्रदान करना, इस प्रकार मलबरी कोसा उत्पादन में वृद्धि करना, ये सब मुख्य है। और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, संचालित योजना है, जिसको बोलते हैं सिल समग्र योजना। इसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को अपने निजी भूमि में 1 एकड़ भूमि पे मलबरी सहतूत पौधरोपण करना है और रेशम उत्पादन करना है। इससे इस योजना में कृमि पालन भवन निर्माण के लिए लगभग 3.25 लाख रुपया, सिंचाई कार्य के लिए 60,000 रुपया, पौधरोपण के लिए 60,000 रुपया, कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपया, निसंक्रमण सामग्री के लिए 5,000 रुपया, इस प्रकार मतलब कुल 5 लाख रुपया की स्कीम है, जिसमें हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनको भुगतान किया जाता है और 100% इसमें सब्सिडी है। इसका भी मुख्य उद्देश्य है राज्य में रेशम उत्पादन में वृद्धि करना, ये यहाँ का हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी,
0: जैसे ये जिन मुख्य योजना आप बताया है केंद्र सरकार के राज्य सरकार के, तो एक हर से कहाँ संपर्क करे जाए?
1: इसके लिए आप सभी जिले में जिला ऑफिस है रेशम विभाग का, वहाँ जाके संपर्क कर लेंगे जिला रेशम अधिकारी से। अच्छा। तो विस्तृत रूप से जानकारियाँ भी मिल जाएगी और सहयोग मिलेगा। जी,
0: बहुत सुघर जानकारी आज आप ये विषय ऊपर दिए हा। आज के विषय रही से टसर कोसा कृमि पालन कौन ढंग से करे जाए, और विषय ऊपर आप बड़ा सुघर सुघर जानकारी दिए हा। तेकर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, आप सभी को, सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। आप लोगों ने कोसा कृमि पालन के बारे में ये जानकारियां सुनी, उसके लिए धन्यवाद।
0: राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
2: तो बहनी किसान हो भाई हो, आप मन सुना ना भाई कि कौन प्रकार ले हमला बढ़िया तसर कोशा कृमि पालन करना है और अपन आमदनी ला बढ़ाना हवे। सुघर सुघर बात बताएं श्री मधुप चंदन सहायक संचालक रेशम जांजगीर चापा के मन, और इखर से गुरतुर गुरतुर भाखा मा पूछत रहीन हमार कार्यक्रम सहयोगी भाई जीतू भैया मन। आप मन सुना सुन के लाभ जरूर उठा, अब आप मन ला एक सूचना बता देथन। आप सब जानत हो किसान भाई हो कि प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार के शाम 7:30 में फोन इन में आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जमा किसान भाई मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए पर हमारे विशेषज्ञ मन ले आप मन फोन में सवाल पूछ के समाधान पाथव। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 के हमारे स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहे। बिहनिया 10:30 से 11 बजे तक आप सवाल पूछ सकत हो। विषय हवे धान फसल में जल प्रबंधन। एक पैत और बता दी, प्रथम भाग में रही धान फसल में जल प्रबंधन और दूसर भाग सुबह 11 बजे से 11:30 तक की विषय रही दलहनी तिलहनी फसल मा जल प्रबंधन। एक पिताऊ दूसर भाग बता देथन, दलहनी तिलहनी फसल मा जल प्रबंधन ते विषय में संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए बर हमार फोन नंबर आप मन लिख ले। फोन नंबर है 2665-92। उखर बाद एक ठो नंबर बतावथन आप मन ला 1300026। एक पिताऊ बता देथन 3100026। ये दूठो नंबर आप मन देवथन संगवारी हो। बिलासपुर के एसटीडी कोड नंबर हवा 07752। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग

प्रसारण 2 जुलाई और 3 जुलाई 2026 के संझा 7:30 ले 8 बजे तक आप सुन सकत हो सूचना सिरागे। अब आवास एक पे पुनः नमन कर लेथन। हाँ कबीरदास जी मल्ला, मैं तो चरण के पुजारी, स्वर हवाय परशुराम पटेल और श्यामाबाई लोहार के।

किसान संगवारी हो, देखो कतका बढ़िया अपन जिन गुरु है और जिन संत होते वो महान होते, संत के जेखर ऊपर कृपा होते ओखर ऊपर सब कोई कृपा करते। तो संत जिन होते वो जैसन की वो एक फलदार वृक्ष के समान होते है ना, जीतते पाहन हनत उतते फल देत। तो संत ला मान सम्मान अपमान ले कोई लेना देना नहीं हुआ है, वो एक पूरा दुनिया के लिए परोपकार के लिए उनका जीवन पूरा समर्पित रहे थे। अब आप सब जानबे करत हो कि कबीरदास जी के पूरा जीवन समाज ल सुधारे पर, अंधविश्वास कुरूति छुआछूत भेदभाव ला मिटाय पर हमेशा वो समय रही से और हमेशा उखर जिन दोहा है वो हमेशा हमन के सतमार्ग दिखात रही। पुनः एक पेत आप सबला बहुत बहुत साहेब बंदगी और बधाई आप मनला। एक जात जाता एक पिताओ सूचना आप मनला बता दीन, गुरुवार के दिनांक 2 जुलाई 2026 के हमारे स्टूडियो माँ कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे जी में उपस्थित रही। बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक के सवाल अपन कर सकत हो। धान फसल में जल प्रबंधन और दूसरा 11:30 तक अपन दलहनी तिलहनी फसल माँ जल प्रबंधन ए विषय में आप समस्या का समाधान पा सकत हो। फोन नंबर है 2665692, दूसरा नंबर है 3100026, एसटीडी कोड नंबर 07752। तो अपन खचित फोन लगाए बर तैयार रही है। एक संग कार्यक्रम ले विदल है कि बेरा हो गए है। आप सब झनला जय जोहार, राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है एक विशेष भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है मादक पदार्थों से कैसे बचें। श्रोताओं, इस विषय से संबंधित जानकारी दे रहे हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव और भेंट करता है नेमी चंद्र साहू। लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। मादक पदार्थों नशा के सामानों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करके बता करके नशे के दलदल में फंसने से बचाया जा सकता है और जो लोग नशा के आदि हैं उन्हें भी इस दुष्चक्र से निकाला जा सकता है। हर साल 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 2026 के इस दिवस की थीम है विश्व मादक पदार्थों की समस्या, स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियां और अभिनव समाधान। मादक पदार्थों, नशे के सामानों से होने वाले नुकसान और कैसे बचें, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं बिलासपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव जी को। डॉक्टर राव जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: डॉक्टर राव जी, पूरे विश्व भर में विश्व मादक पदार्थ निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा क्या होती है, किस नशीली पदार्थों से क्या परिणाम हो सकता है जीवन पे और उसका इलाज क्या हो सकता है अगर यदि कोई व्यक्ति उससे आदि है या पीड़ित है। कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से कोई भी नशीली पदार्थ तस्करी कर रहा है या कहीं ले जाके बेच रहा है, क्या पनिशमेंट हो सकता है, ये समझाने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, सरल अर्थों में जानना चाहें तो मादक पदार्थ होता क्या है?
1: कोई भी व्यक्ति किसी भी नशीली पदार्थ को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है या किसी डॉक्टर से संपर्क करके

0: अपनी मन से ज्यादा यूज कर रहा है, इसका मतलब वो नशीली पदार्थ से आदि हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी के नशीले पदार्थ होते हैं
1: जी,
0: दिमाग को ठंडा करने के लिए,
1: जी,
0: इसको डिप्रेसेंट्स बोलते हैं।
1: जी,
0: एक उदाहरण है अल्कोहल है
1: जी,
0: या नींद का दवाई है,
1: जी,
0: और कुछ ऐसे नशीली पदार्थ है दिमाग को उत्तेजित करते हैं। तो ये एक उदाहरण है गांजा,
1: जी,
0: और छत्तीसगढ़ में जो हम लोग सुनते हैं राकेट गोली, शिवलहरी,
1: जी,
0: अंटा गोली, ये
1: जी
0: सारे पदार्थ गांजा से ही बनता है। इसको मारिजुआना कहते हैं, ये दिमाग को उत्तेजित करते हैं। और दूसरा पदार्थ तंबाकू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू, ये सारे चीजें दिमाग को उत्तेजित करते हैं, इसको स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे नशीली पदार्थ है उसको अलग कैटेगरी बनाया गया है, ओपिएट्स यानी अफीम बोलते हैं, और ब्राउन शुगर बोलते हैं, और स्मैक बोलते हैं, और उसी कैटेगरी के ही कुछ कफ सिरप्स होते हैं, जो खांसी के लिए सिरप होता है उसमें भी कुछ ओपिएट्स होता है, कोडीन बोलते हैं, और कुछ इंजेक्शंस आता है। आजकल ये बहुत ज्यादा ही ट्रेंड हुआ है, स्पेशली अडोलसेंट्स यानी नाबालिग बच्चे या 15 से 20 साल के उम्र के बच्चे इतना आदि होते हैं इंजेक्शन के लिए। वो इंजेक्शन एक बार लगाने से उनको इतना नशा मिलता है, दर्द महसूस नहीं होती है, तो उसके लिए आदि होते हैं। और दूसरा एक और चीज, हेलुसिनोजेंस, ये एक और कैटेगरी है। इसमें बहुत बड़े बड़े नशे होते हैं, लाइक एलएसडी, और कुछ मशरूम्स नाम सुने होंगे, मशरूम्स बोलते हैं, अलग कैटेगरी का मशरूम्स है। तो उसको खाने से कुछ दूसरा ही दुनिया में लेके जाते हैं, कुछ दिखाई देने लगते हैं, एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं, इसको हेलुसिनोजेंस बोलते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज है अलग अलग नशीले पदार्थों का।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है ये, तो ये क्या नशे के समान हमारे देश में ही इलीगल तरीके से बनाए जाते हैं, अवैधानिक तरीके से बनाए जाते हैं, या विदेशों से अवैधानिक तरीके से यहाँ मंगाए जाते हैं, इस संबंध में बताइएगा।
0: अवैध तस्करी हमारे देश के अंदर भी हो रहा है, देश से बाहर से भी आ रहा है।
1: जी
0: लाइक अफीम के बारे में ही हम बात करें या ब्राउन शुगर के बारे में ही बात करें, कुछ दवाई बनाने के लिए अफीम की जरूरत पड़ती है।
1: जी
0: तो वो कितना मात्रा में उसका खेती होना चाहिए, कितना मात्रा में किसी फैक्ट्री को बेचना चाहिए, ये सरकार हमेशा डिसाइड करती है, हमेशा कंट्रोल करती है। अगर वही अफीम ज्यादा मात्रा में खेती कर रहा है, वो किसी को भेज रहा है और किसी को नशा के रूप में दिला रहा है, या वो किसी डॉक्टर से संपर्क करके वो अपने मन से ज्यादा ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो इसको अवैध रूप से यूज करना बोल सकते हैं। और तस्करी एक कोने से दूसरा कोने तक, फॉर सपोज पंजाब से छत्तीसगढ़ आ रही है अफीम या ब्राउन शुगर या ओपियोइड की इंजेक्शंस, रेक्सोजेसिक इंजेक्शंस कहते हैं, तो ये अवैध रूप से वहां से पंजाब से यहाँ तक आ रही है, ये तस्करी हो रही है, तो ये गैर कानूनी है, इसके लिए कानून में पनिशमेंट्स भी हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये जो नशे के जो सामान हैं जो अभी बताए आपने, ये नशे के सामान बहुत महंगे भी मिलते होंगे, तो इसके लिए जो गिरोह है लोगों को आदी बनाने के लिए, वो किस उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, कैसे वो अपना माल को बेच सके, ऐसे कैसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं?
0: ज्यादातर जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ज्यादातर 10 या 12 साल के उम्र के बच्चों को दिलाया जाता है। अगर एक बार बच्चा उसका असर देखा, महसूस किया, फिर वो छोड़ नहीं पाता है, वो किसी भी तरीके से वो नशीले पदार्थ को लेने के लिए ही कोशिश करेगा। और बच्चों को ऐसे चाल में फंसाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए जो भी तस्करी करते हैं, अवैध तस्करी करते हैं नशीले पदार्थों का, बच्चों का ही टारगेट करते हैं, और ज्यादातर बच्चे ही फंस जाते हैं इस चाल पे और आदि हो जाते हैं, और इसके लिए चोरी करते हैं, सामान बेचते हैं, किसी का खूनी करते हैं, तो वैसे ही क्राइम रेट भी बढ़ रहा है नशीले पदार्थों के कारण से।
1: डॉक्टर साहब, तो हमारे बच्चों को हम

0: कैसे बताएं, कैसे सिखाएं कि हमें इन नशे के सामानों से कैसे बचना है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कैसे बताएं?
1: अच्छा माध्यम है स्कूल। स्कूल में सारे बच्चों को इस नशीले पदार्थों के बारे में समझाना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। नशीले पदार्थ क्या होती है और उसको लेने से ब्रेन के ऊपर असर क्या हो सकती है, और यदि आदि होते हैं नशीले पदार्थ से उसका इलाज क्या है, और कानून के अंतर्गत किस नशीले पदार्थ लेने से क्या पनिशमेंट मिल सकता है, ये सारी चीजें बच्चों को अगर समझाया जा सके तो नशे को रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने लीगल और इलीगल नशे के समान कह रहे थे, तो ये क्या होता है?
1: एक एग्जांपल है, लीगल नशीले पदार्थ यानी एक तंबाकू आपको आसानी से मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा
0: जी।
1: अगर वही नशीले पदार्थ गैर कानूनी है, सपोज गांजा है, मारजुआना कहते हैं, उसको खरीदना, अपने पास रखना और किसी को बेचना ये गैर कानूनी है, तो उसको इलीगल नशीले पदार्थ बोलते हैं। और तंबाकू, गुड़ाकू, इवन अल्कोहल, ये लीगल नशीले पदार्थ होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, नशे के सामान चाहे लीगल हो या इलीगल, नुकसान तो उतना ही पहुंचाता है, तो ये जो लीगल नशे के सामान है उनसे भी हमारे बच्चों को, वयस्कों को, सबको बचाना है, तो कैसे बचाएं? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इससे हम बच्चों को कैसे बचाएं, या जो व्यक्ति हैं जो इसके आदि हो गए हैं उनको हम इन चीजों से कैसे बचाएं?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, लीगल हो या इलीगल हो, कोई भी नशीली पदार्थ बच्चों के दिमाग के लिए सही नहीं है, क्योंकि बच्चों का दिमाग डेवलप होती रहती है, तो जब उस दिमाग के ऊपर ऐसे नशीले पदार्थों का असर होता है तो ऑटोमेटिक ब्रेन डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाती है। बच्चों का पढ़ाई में असर होती है, आगे जीवन में असर होती है, तो कोई भी नशीले पदार्थ लेने से एक बार सोचे, या कोई बच्चों को भड़का रहा है ये अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखो, तुरंत आप अपने बड़ों का सलाह लें या बड़ों को बताएं या अपने स्कूल में टीचर्स को बताएं।
0: डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि कई नशे के सामान ऐसे हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद उसको छोड़ पाना मुश्किल होता है, वो आदि हो जाते हैं, तो घर वालों को तो पता नहीं चल पाता कि वे नशे का सामान लिया है कि नहीं, कैसे परिवार के सदस्यों को जाने कि ये कहीं नशे के आदि तो नहीं हो गया है, क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं?
1: ये पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ से आदि हो गए तो वो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, या उनके हाव भाव से ये पता चलता है कि वो चिड़चिड़ाते हैं बहुत जल्दी, या सुस्त रहते हैं हमेशा, कोई भी काम को नॉर्मल तरीके से, ये जो नॉर्मल व्यक्ति आसानी से जो करते हैं उस काम को वो आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, और हमेशा सुस्त रहते हैं या चिड़चिड़ाते रहते हैं, या ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, या बार बार, फॉर सपोज बड़े लोग हैं तो बार बार छुट्टी ले रहे हैं, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए छुट्टी ले रहा है, तो कुछ भी नशे से वो आदि हो सकता है, या बार बार ऑफिस लेट आ रहा है, रात को ज्यादा नशीले पदार्थ लिया तो सुबह ऑफिस लेट आ रहा है, और बच्चे बार बार पैसा मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, और खासकर शाम के समय यूजुअली होता है, ये सबके लिए नहीं है, तो शाम के समय बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं तो बच्चों का हाव भाव में बहुत कुछ चेंजेस दिख रहा है, सुस्त दिख रहा है, चिड़चिड़ाहट दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ नशीले पदार्थ ले रहा है।
0: डॉक्टर साहब, ये मादक पदार्थ है, नशे के समान है, वो दिमाग में कैसे असर करता है?
1: कोई भी नशीले पदार्थ लेने से दिमाग के अंदर कुछ ऐसे रसायन होता है, उसको डोपामिन्स बोलते हैं
0: जी।
1: तो वो डोपामिन रिलीज होता है
0: जी।
1: अच्छा लगने लगता है
0: जी।
1: खासकर सारे नशीले पदार्थों से डोपामिन रिलीज होती है ब्रेन में
0: जी।
1: तो उससे व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लगता है, दर्द महसूस नहीं होगा, ज्यादा खुशी महसूस होगा
0: जी।
1: और ऐसा नींद आता है, कोई जगाने पर भी नहीं उठ पाते हैं, तो वैसे नशीले पदार्थों से डोपामिन रिलीज के कारण से ये सारे लक्षण दिखने लगता है
0: जी।
1: और उसी डोपामिन के लिए या जो उससे अच्छा जो फीलिंग होता है उसके लिए बार बार नशीले पदार्थ लेने के लिए कोशिश करते हैं, अब वो आदत में हो जाता है।

0: डॉक्टर साहब, समय के साथ नशे के नए नए सामान भी आ रहे हैं, फ्लेवर्ड युक्त आ रहे हैं। ई सिगरेट के संबंध में बताइए, ये किस प्रकार हानिकारक है?
1: तंबाकू से संबंधित जो सिगरेट्स हैं उसको छोड़ के ई सिगरेट लेने के लिए या ई सिगरेट ले रहे हैं लोग। आजकल ट्रेंड है कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया, ई सिगरेट यूज कर रहा हूँ, वो भी उतना ही हानिकारक है जितना नॉर्मल तंबाकू वाला सिगरेट हानिकारक है। बस इतना ही फर्क है, नॉर्मल तंबाकू वाले सिगरेट में कैंसर कारक पदार्थ ज्यादा होते हैं, ई सिगरेट में कम होते हैं, लेकिन आदत तो वही है। सिगरेट का जो आदि होते हैं, ई सिगरेट से भी उतनी ही आदि होते हैं लोग, बस कैंसर कारक पदार्थ कम होता है ई सिगरेट में।
0: डॉक्टर साहब, आजकल तो 12-13 साल के बच्चे भी उसमें फ्लेवर्ड रहता है, इस कारण भी उसको उपयोग करने लगे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों का ये एक ट्रेंड है, तो फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स वेप बोलते हैं, तो ये आजकल बहुत बच्चे, मैं देखा हूँ सुना हूँ, बच्चों में जो फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स का ट्रेंड बहुत आगे बढ़ चुका है अभी स्कूलों में और बाहर भी, और वैसे शहर्स में भी स्मोक जोन्स करके आजकल ट्रेंड चल रहा है, वहाँ भी बच्चे जाते हैं तो सिगरेट पीने के लिए, और उनको एक कमरा दिया जाता है तो वहाँ सिगरेट्स पीते हैं, तो आराम से वहाँ ई सिगरेट चलता है, फ्लेवर्ड सिगरेट्स चलता है, तो ये बच्चों के लिए सही नहीं है। और अगर किसी बड़ों के जानकारी में ऐसा आता है या स्कूल में किसी टीचर्स के जानकारी में आता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, पान मसाला गुटखा तंबाकू, ये किस तरह के नशे हैं और इससे क्या क्या नुकसान होता है?
1: पान मसाला गुटखा तंबाकू, ये सारे चीजें तंबाकू से रिलेटेड नशीले पदार्थ ही है, और इससे नुकसान धीरे धीरे मुंह में, जो भी व्यक्ति गुटखा ले रहा है उनके मुंह में छाला होने लगता है। अगर वही छाला बार बार हो रहा है और बहुत समय तक वो ठीक नहीं हो पा रही है, वो आगे होके कैंसर बन सकता है, जबड़े में कैंसर, ये सारे कैंसर्स की सबसे बड़ा कारण गुटखा पान मसाला तंबाकू ही है।
0: डॉक्टर साहब, कई परिवार में माता पिता नशा करते हैं, तो ऐसे परिवार में बच्चों पर किस प्रकार का असर पड़ता है?
1: बड़े लोगों को देख के बच्चे सीखते ही हैं, चाहे वो अच्छे आदत हो या बुरे आदत हो, तो अगर बच्चों के सामने कोई भी व्यक्ति परिवार में नशा ले रहे हैं, उस चीज को बच्चे सीखते हैं और खासकर छोटे उम्र में, मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा हूँ 10 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे दारू पीना सीखे हैं, गांजा पीना सीखे हैं, क्योंकि उनके घर पे बड़े लोग भी वैसे ही नशा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। ये बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, नया वो ट्राई करते हैं तो फिर उसको छोड़ नहीं पाते।
0: डॉक्टर साहब, क्या नशा पान या मादक पदार्थों का सेवन मानसिक बीमारी है?
1: कोई भी व्यक्ति कोई भी नशीले पदार्थ से, चाहे वो तंबाकू हो या दारू हो या गांजा हो या कुछ और नींद का दवाई हो, छोड़ नहीं पा रहा है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको लेने से, तो ये एक मानसिक बीमारी है। बिल्कुल इलाज संभव है, पुनर्वास संभव है, उस नशीले पदार्थ छोड़ सकते हैं इलाज के द्वारा।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये नशे की आदत को छोड़ सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या उपाय है?
1: नशीले पदार्थ छोड़ना उतना आसान नहीं है, हर नशीले पदार्थ के लिए अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। लाइक तंबाकू छोड़ने से किसी को चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाता है और किसी को पेट साफ नहीं होती है, वैसे ही दारू छोड़ने से नींद नहीं आती है, एकदम हाथ पैर कांपने लगता है, चिड़चिड़ाहट लगने लगता है, किसी व्यक्ति को कुछ अजीब सा दिखाई देने लगते हैं, कुछ सुनाई देने लगते हैं, ये दारू छोड़ने का विड्रॉल सिम्टम्स है। वैसे ही अफीम, ब्राउन शुगर, इसको छोड़ने से व्यक्ति के शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती है, पतले दस्त होने लगता है, तो हर नशीले पदार्थ छोड़ने से उसका विड्रॉल सिम्टम्स होता है, और उसी विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए दवाई आती है, उस दवाई

0: दवाई देने से इनिशियली विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद नशा छोड़ने के लिए दवाई भी होती है और काउंसलिंग भी जरूरत पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, दवाई और काउंसलिंग, ये कोई व्यक्ति कहाँ से पा सकता, कैसे उनको उपलब्ध हो सकता है?
0: नशा छोड़ने के लिए दवाइयाँ कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ के पास मिलता है, तो किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं दवाई के लिए, और परामर्श हेतु मनोरोग विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं या काउंसलर से भी मिल सकते हैं
1: जी।
0: तो दोनों जरूरी है
1: जी।
0: दोनों से ही नशा मुक्त हो पाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कुछ मादक पदार्थ के थोड़े अंश बहुत सी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए दिया जाता है, चिकित्सक की देखरेख में दी जाती है, फिर समाज में कुछ लोग केवल मजा लेने के लिए ऐसे मादक पदार्थ क्यों खाने लगते हैं, इसके पीछे कारण क्या है?
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो गांजा से जो कुछ और पदार्थ बनाते हैं और उसको कुछ बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, और अफीम से कुछ और पदार्थ को निकालते हैं, उसको कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वही चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिना किसी डॉक्टर से पूछे उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो उस पदार्थ से व्यक्ति आदि होते हैं
1: जी।
0: उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, असंभव होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग बोलते हैं कि नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है, जबकि कुछ व्यक्ति एकाएक नशा छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या नशा एकाएक छोड़ देना चाहिए या धीरे धीरे छोड़ना चाहिए?
0: नहीं, ये गलत फहमी है। एकाएक नशा छोड़ने से परेशानी होती है, इसलिए धीरे धीरे नशा छोड़ना चाहिए। हम मेडिकल फील्ड से हैं, तो मैं 100% सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि नशा आसानी से छोड़ सकते हैं, एकाएक छोड़ सकते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पे या डॉक्टर के मदद से छोड़े
1: जी।
0: तो एकाएक नशा को छोड़ सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, नशा के आदि ना बने, लोग नशे की ओर आकृष्ट ना हो, कई लोग पारिवारिक तनाव कलह इस कारण भी नशे के आदि होते हैं, तो परिवार में माहौल कैसे बनाया जाए कि लोग इन नशीले सामानों की ओर आकृष्ट ना हो, इस संबंध में बताइएगा
0: जी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई भी व्यक्ति तनाव में रहते हैं, उनको इजी तरीका चाहिए उससे बाहर आने के लिए
1: जी।
0: और इजी तरीका एक ही दिखता है, नशा। ज्यादातर लोगों में घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक सिगरेट पीने से उनका तनाव कम हो जाएगा
1: जी।
0: या एक दिन दारू पीने से वो दर्द कम होगा, ऐसा लोग सोचते हैं
1: जी।
0: इस सोच को सुधारना, हटाना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: इसको हटाना तो फैमिली में, परिवार में एक दूसरों का मदद करना बहुत जरूरी है, एक दूसरों को समझना बहुत जरूरी है। अगला व्यक्ति कितना तनाव में है उसके आधार पर ही हम उनसे पेश आएंगे, उसको कुछ मदद की जरूरत है। कई लोग मदद किसी से मांगते नहीं है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति तनाव में है, आपको लगता है तो उनको मदद की जरूरत है, बिना पूछे अगर आप उनको मदद करेंगे
1: जी।
0: चाहे वो परिवार में हो या काम करने का जगह हो या स्कूल में हो, तो अगर उनको मदद हम पहले से ही दें, वो पूछने से पहले उनको समझें सामने वालों को, तो इलाज संभव है और उस व्यक्ति नशीले पदार्थ के और नहीं जाएंगे
1: जी। डॉक्टर साहब, अंत में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नशा छोड़िए, नशा मुक्त भारत को सपना देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है या स्ट्रेस होता है, तनाव होती है लाइफ में, उसका इजी तरीका नशा नहीं है, कुछ और तरीका हो सकता है, तो दूसरा अल्टरनेटिव खोजें नशीले पदार्थ से जो बेहतर हो, तो उससे आपका तनाव भी कम हो, आप उससे आदि ना हो।
1: डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव जी, आपने हमारे श्रोताओं को नशापान, मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इस भेंटवार्ता का विषय था, मादक पदार्थों से कैसे बचें। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव, भेंट करता थे नेमी चंद्र साहू। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:23 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम। साथियों, हर मुलाकात पर तमाम बातों का मुकम्मल होना ज़रूरी तो नहीं, यूं तो मोहब्बत में थोड़ी दूरियां भी लाजमी होती हैं। अधूरी गुफ्तगू का एक सिलसिला बचा कर रखा है हमने भी, क्या पता इसी बहाने सुनने वालों के दिलों में मिलने की थोड़ी तलब बाकी हो, आरजू बाकी हो, चाहत बाकी हो। और जब चाहतों की बात आती है ना, तो चाहतों का एक भरा पूरा समंदर अपनी तमाम मौजों के साथ मुलाकातों की ख्वाहिश का दम भरने पर आमादा महसूस होने लगता है। वैसे रजनीगंधा के हर नए सफ़र के साथ चलना मानो किसी पुरानी स्मृति के जंगल में टहलना है, जहाँ हर मोड़ पर कोई नई सी खुशबू है, कोई नया सा विस्मय इंतज़ार में लीन है। यहाँ गीतों और किस्सों का रसायन हमारी धमनियों को ऊर्जा प्रदान करता है और हम बहते रहते हैं उन्हीं गलियारों में जहाँ से निकलते हैं हिंदी सिनेमा जगत के अनमोल सितारे, जहाँ से फैलती है रोशनी जो हमें जोड़ती है फिल्मों से, मोहब्बत करना सिखाती है, गीत संगीत को हमारे सुखों और दुखों का निरंतर साथी बनाती है। बहरहाल, रजनीगंधा की महफिल सजी हो और हम हिंदी फिल्मी जगत की बातें साझा न करें, ये भला कैसे मुमकिन है। तो चलिए, आज हम आपको लिए चलते हैं 70 के दशक के उस विशिष्ट गीतकार की यादों के सफ़र में, जहां से हमने संजोया एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय गीतकार गौहर कानपुरी के विषय में। जी हाँ, गौहर कानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1932 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। सूत्र बतलाते हैं कि उन्हें स्कूल के दिनों से ही कविता और शायरी लिखने का बहुत शौक रहा और किशोरावस्था तक आते आते गौहर कानपुरी ने इस विधा में पारंगत हासिल कर लिया। निरंतर अपने प्रयास और मेहनत के बूते गौहर कानपुरी को उनकी लिखी रचनाओं से काफ़ी लोकप्रियता और सराहना भी मिलने लगी। और फिर क्या था, अपनी रचनाओं के लिए मिली प्रशंसा से प्रेरित होकर गौहर कानपुरी ने सीधे फिल्मों में गीत लिखने के काम को करियर के रूप में चुना और वे मुंबई आकर बस गए। लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष भरे दिनों के बाद उन्हें 1967 में फिल्म प्यार की बाजी फिल्म में गीत लिखने का मौका मिला और उन्होंने बॉलीवुड में इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया। गौहर कानपुरी को एक गीतकार के रूप में असली पहचान मिली 1975 में आई फिल्म जख्मी से। इस फिल्म में संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फिल्म के सभी गाने तकरीबन सुपर डुपर हिट रहे। इस फिल्म का एक लोकप्रिय गीत याद कीजिए, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। ऐसे बहुतेरे गीत हुए जो आज भी लोगों की जुबान में रचे बसे हुए हैं।

शुदा जख्मी फिल्म की सफलता के बाद गौहर कानपुरी ने कई सदाबहार हिट फिल्मों के लिए गीतों की रचना की, जैसे सावन को आने दो, बाजीगर, जान तेरे नाम जैसी फिल्में। फिल्मी जगत के अपने पूरे करियर में गौहर कानपुरी ने लगभग 120 फिल्मों के लिए 300 से भी अधिक गीतों की रचना की, जिनसे उन्हें शानदार सफलता तो मिली और वे संगीतकारों की पसंद वाले गीतकार भी बन गए। गौहर कानपुरी ने मुख्य रूप से 70 और 80 के दशक में अपनी बेहतरीन शायरी और गीतों से सुनने वालों को वो सुकून पेश किया जिसकी तलब और ज़रूरत इस भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हम सबको थोड़ी थोड़ी अवश्य महसूस होती रही। उनके गीतों के बोल बेहद मुलायम, शफाक और दिल में गहराई तक उतरने वाले हुआ किए।

श्रोताओं, अफसोस की बात तो ये है कि 29 जून यानी आज ही के दिन 2002 को किडनी के संक्रमण से जूझते हुए गौहर कानपुरी साहब ने इस फानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। गौहर कानपुरी ने 70 वर्ष की आयु में वो गीत रचे जिन्हें रहती दुनिया तलक उनके चाहने वाले गुनगुनाते रहेंगे।

0: श्रोताओं, ये थी आज की रजनीगंधा, जो केंद्रित थी जाने माने गीतकार गौहर कानपुरी की सुरमई यादों पर। और अब चलते चलते हम तो आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। इसी नोट पर दीजिए आपकी अपनी अंतरा को विदा, कि होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में किसी और सफर में। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय

0: महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

0: महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, पहली जुलाई से सुबह और शाम।

0: शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे ख़ासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लासिक। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ए सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ए सनम।

धधक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें, भूलना नहीं है ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें, जीने के सहारे इन्हें भूलना नहीं है।

0: मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें, ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें।
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे सहारे।
2: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: ये आंखें उफ यम्मा, ये सूरत उफ।

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

0: सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना, दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ए सनम तुझे रोके तो कैसे।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल सुबह हम आपकी सेवा में ठीक 5:55 पर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।